सुप्रभात। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज दिन रविवार, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि 10, तदनुसार 31 मई सन 2026 है। इस समय सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये सभा। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे पहले हिंदी में समाचार, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्रैम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टोंटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:10 और 30 सेकंड हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आइए श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं वार्ता। विषय है सतत कृषि।

कृषक मित्रों जोहार। आज खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत बातें करेंगे सतत कृषि के बारे में। किसान भाई बहनों, सतत कृषि खेती की एक ऐसी आधुनिक समग्र प्रणाली है जो पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक लाभ प्रदाता और सामाजिक समानता को संतुलित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना और मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए वर्तमान और भावी पीढ़ियों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। आइए जानते हैं सतत कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं और इनके लाभ क्या क्या होते हैं। पहला है पर्यावरण संरक्षण, यानी रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से बचकर मृदा अपरदन को रोकना तथा पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखना। दूसरा है जल संरक्षण, यानी ड्रिंक इरिगेशन और स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों के माध्यम से जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना है। तीसरा है मृदा स्वास्थ्य और पोषण, यानी फसल चक्र, कृषि वानिकी और जैविक खादों के उपयोग द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना है। चौथा है आर्थिक व्यवहार्यता, यानी उत्पादन लागत कम करके किसान भाई बहनों की दीर्घकालिक

समूह में जैविक खेती करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। तीसरा है प्राकृतिक खेती, यानी रासायनिक आदानों से देसी गाय आधारित खेती को प्रोत्साहित करना ही प्राकृतिक खेती का मुख्य लक्षण है। चौथा है सतत पहल, यह योजना कृषि और अन्य कचरे से बायोगैस या संपीड़ित बायोगैस बनाकर जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि कृषि में अग्रेतर बढ़ोतरी हो सके और केंद्रित योजना का भी लाभ मिल सके। किसान भाई बहनों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि आप सतत कृषि से संबंधित किसी विशिष्ट योजना, सरकारी अनुदान या जैविक खेती के प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कृषि और किसान मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस संदर्भ में संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। सतत कृषि, इसी विषय पर बातें हो रही थी कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत। आप सभी किसान भाई बहनों को पुनः एक बार जोह।

सतत कृषि इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। कार्यक्रम खेती की बातें थे। इसी के साथ दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 MHz पर। अब प्रस्तुत है चिंतन। जीवन में अच्छे कर्म हमारे वर्तमान को बेहतर बनाते हैं और एक उज्जवल भविष्य की नींव रखते हैं। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। हम ब्रह्मांड में जो भेजते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। यदि हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमें आत्मिक संतुष्टि और प्रसन्नता मिलती है, तनाव और चिंता दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। चिंतन अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए कार्यक्रम वंदना की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत के साथ।

देश को समर्पित ये देशभक्ति गीत अभी आपने सुना संवेद स्वर में। दोस्तों, सुबह सुबह ईश्वर की आराधना करने से मन को शांति, सकारात्मक ऊर्जा और दिन भर के लिए हमें स्पष्ट दृष्टिकोण मिलता है। ये हमें दैनिक भागदौड़ से पहले खुद से जुड़ने और मानसिक रूप से मजबूत होने का अवसर प्रदान करता है। तो आइए भक्ति रचनाओं में डूब जाते हैं।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। वंदना में आज के कलाकार हैं सुमन कल्याणपुर।

लता मंगेशकर और सातू की आवाजों में इस वचन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए श्रोताओं सुनते हैं रामचरितमानस।

एक तनु नामक छद्म रूपधारी मुनि और सुअर रूप में प्रकट होने वाले राक्षस कालकेतु के मायावी षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु ने भोजन के लिए 100,000 ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। राजा के पुरोहित रसोइये के रूप में स्वयं कपटी मुनि ने वेदों में वर्णित 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन बनाया, जिसमें नाना पशुओं के अतिरिक्त ब्राह्मणों का मांस पकाया गया था। ज्यों ही राजा भोजन परोसने लगा कि गंभीर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, यह भोजन मत खाओ, इसको खाने से बड़ी हानि होगी, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। ये सुनकर स्तंभित ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हुए और राजा को शाप दिया कि 1 वर्ष के भीतर वह परिवार सहित राक्षस हो जाएगा। किंतु तभी फिर से आकाश से सुंदर वाणी घोषित हुई कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं था, वह स्वयं तो निर्दोष था। ये सुनकर सभी ब्राह्मण चकित रह गए

रामचरितमानस अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7 बजने वाले हैं। अब समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार बुलेटिन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, आपको बता दें, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जनता के साथ मन की बात ये कार्यक्रम सुनेगा आज 11 बजे से। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 का समय होगा कार्यक्रम सुगम संगीत का।

10:20 पर कार्यक्रम लोकगीत के तहत आज हम आपको सुनवाएंगे कुमुद अखौरी की आवाज में भोजपुरी लोकगीत। सुबह 7:35 का समय होता है बांग्ला गीतों के कार्यक्रम सुरांजलि का। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा मधुजा चटर्जी की आवाज में कुछ आधुनिक बांग्ला गान। सुबह 7:50 का समय होता है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का। आज इस कार्यक्रम में हमने शामिल किया है भेंटवार्ता, विषय होगा तंबाकू सेवन और कैंसर का खतरा। इस विषय पर हमें बताएंगे डॉक्टर किशोर कुमार चितलांगिया। आठ बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आठ बजकर 30 पर सुनेगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। फिल्म संगीत ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे सुबह 8:45 पर। 9 सुनिएगा हिंदी में समाचार। 9:05 पर होगा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना। सुरंजना में आज सुनिएगा शीर्षक गीत।

श्रोताओ, आज रविवार है। बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम पल्लव का समय होगा सुबह 9:30। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा चर्चा, हमारे जीवन में अनुशासन का महत्व इस विषय पर। साथ ही एक वार्ता सुनिएगा, जल संरक्षण में बच्चों का योगदान इस विषय पर। दस बजे हिंदी में समाचार और 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 10:10 का समय होगा कार्यक्रम विश्व दर्पण का। फिल्म संगीत का आनंद एक बार फिर ले सकेंगे सुबह 10:20 से। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जनता के साथ मन की बात सुनेगा सुबह 11 से। कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। सुबह के 7:10 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। आइए आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं अनूप जलोटा की आवाज में चंद गजलें।

वो मेरा था ये बताना अजीब लगता है, अब उससे आंख मिलाना अजीब लगता है। इसरार अंसारी की लिखी ये गजल आप सुन रहे थे अनूप जलोटा की आवाज में। घर बैठ के सब पी लेंगे तो मैं खाने का क्या होगा, नजरों से गुजारा चल जाए तो पैमाने का क्या होगा। आइए कतिल शिफाई की लिखी ये गजल सुनते हैं अनूप जलोटा की ही आवाज में।

अनूप जलोटा की आवाज़ में गाए इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकगीत। आइए श्रोताओं, आज लोकगीत के इस कार्यक्रम में सुनते हैं चंद भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं कुमुद अखौरी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

कुमुद अखौरी की आवाज़ में आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। इसी के साथ लोकगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:35 और 40 सेकंड हो रहे हैं श्रोताओं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरांजलि। आइए आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं मधुजा चैटर्जी की आवाज़ में कुछ आधुनिक बांग्ला गाना।

मधुजा चैटर्जी की आवाज़ में आप सुन रहे थे आधुनिक बांग्ला गान, और इस गाने के साथ ही कार्यक्रम सुरांजलि अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आइए श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं भेंट वार्ता। विषय है तंबाकू सेवन और कैंसर का खतरा। भेंट वार्ता कर रहे हैं डॉक्टर किशोर कुमार चितलांगिया, इनसे बातचीत कर रहे हैं राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, आजकल के दिनों में तंबाकू सेवन का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कई तरीके से लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, ये जानते हुए कि इसका दुष्प्रभाव उन्हें कैंसर की बीमारी तक ले जा सकता है। स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में हम बातें करेंगे इसी विषय पर। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर किशोर कुमार चितलांगिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को ये जानकारी दीजिए कि तंबाकू किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा खराब करता है।
1: तंबाकू हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा कुप्रभाव डालता है। बॉडी के हर सिस्टम को ये प्रभावित करता है। तंबाकू हम लोग स्मोकिंग के रूप में यूज करते हैं, जैसे बीड़ी है, सिगरेट है और दूसरा खैनी है, उसके अलावा गुटखा है, कई लोग गुड़ाकू करते हैं, वो भी तंबाकू का ही एक रूप है कि तंबाकू में निकोटीन होता है।
0: अच्छा।
1: और वो निकोटीन हमारे बॉडी में जब अंदर जाता है ब्लड में, और वो जा करके ए फीलिंग ऑफ गुडविल है ना, वेल बीइंग की फीलिंग ब्रेन में प्रोड्यूस करता है।
0: हाँ, ये आम धारणा है।
1: हाँ,
0: और एक भ्रांतियां फैली हुई है, लोग ये कहते हैं कि हम जो भी लेते हैं उसे बाद में तो फेंक ही देते हैं बाहर, मेरा अंदर कुछ नहीं जाता।
1: यस, लोग ये कहते हैं कि जैसे खैनी खाने वाले लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ नहीं है, खैनी तो मैं मुंह के अंदर, पेट के अंदर तो जाता ही नहीं है
0: जी।
1: हाँ, होंठ के नीचे रखते हैं।
0: हाँ,
1: लेकिन होता क्या है कि उनको वेल बीइंग तो वो निकोटीन के माध्यम से जाती है, और वो जब मुंह के अंदर रखते हैं तो वहीं से वो म्यूकस मेम्ब्रेन उसको क्रॉस करके निकोटीन जो है ब्लड के माध्यम से शरीर में चला जाता है, और उसको जो कुप्रभाव डालना है वो डालता है।
0: हाँ, तो किस तरह कैंसर में परिवर्तित होता है और कैसे लक्षण नजर आते हैं, लोग कैसे समझे कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है?
1: कि हम लोगों के देश में जितना कैंसर होता है उसमें 60-70% कैंसर ये जो हम लोग खाते हैं ना तंबाकू को, मुंह के अंदर ले जाते हैं, उसके चलते होता है। और इसकी भयावहता इतनी ज्यादा है कि इसमें एक विशेष टाइप का कैंसर होता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। कई वैरायटी होती है लेकिन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ज्यादा है। और ये क्या है कि ये नॉन हीलिंग, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं है। स्टार्टिंग में पता चलता है तो लोग इसको सर्जरी करके निकाल देते हैं, लेकिन बाद में मुश्किल हो जाता है। स्टार्टिंग इसका लक्षण है ल्यूकोप्लेकिया होता है, ये एक व्हाइट पैच होता है गाल के अंदर, वो धीरे धीरे घाव में परिवर्तित होता है, ये इसका शुरुआती लक्षण।
0: ये शरीर के अंदरूनी हिस्से को किस तरह प्रभावित करता है?
1: ये धीरे धीरे फैलता है। ये सबसे पहले आपको नियर बाई जितने ऑर्गन्स है सबको डैमेज करता है, आगे जाकर के कंठ में चले जाता है, ग्लॉटिस को उसको डैमेज करता है, और इसके अलावा वोकल कॉर्ड को, ये सब जगह, टंग को, है ना, ये सब जगह फैलता है।
0: अगर कोई कैंसर से ग्रसित हो गया तंबाकू के कारण तो किस तरह का ट्रीटमेंट देना पड़ता है?
1: जैसे मैंने आपको बताया कि एक ल्यूकोप्लेकिया व्हाइट पैच होता है, उसके अलावा एक ऐसा

0: भाव जो कि नहीं सुख है, तो ये हुआ मुंह के कैंसर के बारे में, तो उसको है ना डॉक्टर से मिलना चाहिए। अच्छा। वो एक स्टार्टिंग फेज है।
1: हाँ।
0: उस समय में सर्जरी करने से प्रोग्नोसिस अच्छी रहती है, जीने की समय सीमा है वो थोड़ी अच्छी रहती है, ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा तंबाकू लंग कैंसर को कॉज करता है। लंग कैंसर में क्या है कि आपको खांसी रहेगा जो कि जल्दी ठीक नहीं होगी, कई बार शुरुआती लक्षण में सांस फूलने लगता है, क्या होता है फेफड़े में पानी जमा हो जाता है। इसके अलावा हीमोप्टिसिस है ना, खांसी के साथ खून आता है, ये प्रारंभिक लक्षण है लंग कैंसर।
1: अगर इस तरह का कोई सिम्टम्स है तो तुरंत
0: डॉक्टर से मिलना। आप इसको छोड़ने का मन में निश्चय करें और अपने डॉक्टर से बोले कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, दिली इच्छा है लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, तो डॉक्टर आपको मदद करेंगे। इसमें हम लोग कुछ टैबलेट आती है निकोटीन की, उसको डे बाई डे खिलाते हैं, फिर टैपर करते हैं और मरीज का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ाते हैं।
1: अच्छा।
0: उसको इसके बारे में जानकारी देते हैं कि ये बीमारी होने के बाद में उनका बचना मुश्किल है।
1: अच्छा,
0: परिवार
1: काउंसलिंग
0: की जरूरत है। इसके अलावा इसमें सरकार की तरफ से बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है।
1: तो श्रोताओं, आपने सुना कि तंबाकू सेवन निश्चित तौर पर हमारे शरीर को खराब करता, हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, यदि इसके बारे में हम जागरूक रहें तो बहुत हद तक हम तंबाकू सेवन को छोड़ सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तंबाकू सेवन और कैंसर का खतरा, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता का। भेंटवार्ता का थे डॉक्टर किशोर कुमार चितलांगिया और इनसे बातचीत कर रहे थे राजेश कुमार। इसी के साथ दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब यहीं संपन्न होता है।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: उपभोक्ताओं तक पहुँचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: श्रोताओं, आपको बता दें, आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जनता के साथ मन की बात।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर सुनिएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
1: घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
5: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
4: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
6: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब ₹1.50 प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर ₹13.50 प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क ₹9.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
4: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
7: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा इनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
4: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचल क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
8: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष 2 में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
4: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले 2 दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
9: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमरीका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। आईपीएल के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे नमस्कार प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में आकाशवाणी पर देशवासियों से करेंगे संवाद। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की हजारीबाग में दिशा की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा। स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश। राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन में मंथन तेज। झामुमो कांग्रेस के बीच राज्यसभा उम्मीदवार पर चर्चा। हेमंत सोरेन से फिर मिले तेलंगाना के डिप्टी सीएम। आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। साहिबगंज के युवक समेत 8 संदिग्ध गिरफ्तार। और आरडीसीए महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज। रातू रोड 11 और रॉक मिल्स क्रिकेट एकेडमी के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। हजारीबाग समाहरणालय सभागार में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य व्यवस्था के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जिले में प्रशासनिक स्तर पर नई टीम का गठन किया गया है और उप विकास आयुक्त को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
1: तो दिशा कमेटी के माध्यम से ये तय किया है कि मेडिकल कॉलेज में डीडीसी को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनको दिया जाए ताकि उनके देखरेख में जो भी अव्यवस्था है उसको ठीक किया जाए। सभी माननीय सदस्य ने स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बताया है कि हर छोटी छोटी चीज की ओर उन्होंने ध्यान दिया है। उम्मीद कर सकते हैं कि शायद बेहतर करेंगे। ऐसे जो एक्सपीरियंस रहा है हजारीबाग का बहुत अच्छा तो नहीं रहा है।
0: बैठक में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना प्राथमिकता होनी चाहिए और इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

0: स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अपने पूरी तरह से बीमार है, एक भी पैरामीटर्स पे वो खरा नहीं उतरा। पीएचडी का वही हालत है, बिजली विभाग का वही हालत है। तमें जैसी देखिएगा तो राज्य सरकार जो है ये बैसाखी पर है मोटा मोटी, यही हम लोग कह सकते हैं।
1: झारखंड में 18 जून को राज्यसभा की दो सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और वाम दलों के बीच उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी है। इसी सिलसिले में तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि गठबंधन के सभी दलों से बातचीत की जाएगी। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता मैपिंग की प्रगति और उससे जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर और बीएलए 2 के साथ समन्वय स्थापित कर मतदाता मैपिंग कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस के

0: स्पेशल सेल ने एक बड़े बहुराज्य अभियान के तहत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में झारखंड के साहिबगंज निवासी नीतीश पासवान समेत कुल 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में आयोजित प्रेसवार्ता में विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित 29 और 30 मई की रात कई राज्यों के सुरक्षा कार्यालयों और पुलिस कर्मियों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल एटीआईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल एटीआईआर न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन दिवस के अवसर पर रांची में चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो थीम पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने की। इस अवसर पर पहली बार मासिक धर्म में प्रवेश करने वाली किशोरियों को हाइजीन और पोषण किट प्रदान किया गया।
1: महामारी किसी तरह का कोई उसको सामाजिक गलत सोचना नहीं है, वो एक नेचुरल फेनोमेना है। सभी कस्तूरबा बालिका को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत एक एक वो इंसिनरेटर भी दिए हैं ताकि नैपकिन डिस्पोजल के लिए वो उपयोगी रहे और जो सभी यहाँ बालिकाओं के लिए ट्रेनिंग भी दिए है।
0: रांची और गुमला पुलिस की संयुक्त टीम के समक्ष झांगुर ग्रुप के प्रमुख और 5 लाख रुपए के इनामी अपराधी रामदेव उरांव ने अपने दो सहयोगियों प्रसाद उरांव और सुभाष उरांव के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस के अनुसार रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गठित विशेष टीम ने रांची गुमला सीमा क्षेत्र में कार्रवाई की। इस दौरान तीनों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया गया। बताया गया है कि वे झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्य धारा में लौटना चाहते थे। गिरिडीह जिले के नवडीहा पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से लाखों रुपए मूल्य की नकली शराब जब्त की है। खोरी महुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान 61 पेटी तैयार नकली विदेशी शराब, 15 लीटर स्प्रिट, बड़ी संख्या में खाली बोतलें बरामद की गईं। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में आज वज्रपात के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, बोकारो, लोहरदगा, गुमला, धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी और सिमडेगा जिलों में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की आशंका है।
2: जो लगातार थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है उसके असर अधिकतम तापमान में गिरावट जो है वो देखी जा रही है। तो हमारा अनुमान ये है कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, जिसको देखते हुए कई मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन के लिए जो है अलर्ट भी जारी किए गए हैं। हवा की गति जो है वो भी काफी तेज रह सकती है, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा रह सकती है, चेतावनी भी जारी की गई है।
0: रांची जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित RDCA महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज रातू रोड 11 और रॉक मिल्स क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला जाएगा। यह मैच रांची के शाखा मैदान सेक्टर 2 में सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा। टूर्नामेंट का पुरस्कार वितरण समारोह दोपहर 1 बजे आयोजित किया जाएगा। रांची जिला क्रिकेट संघ ने खेल प्रेमियों को फाइनल मुकाबला देखने के लिए आमंत्रित किया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार 9 आईएसआई के संदिग्धों की गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा, देश में धमाकों की आतंकी साजिश नाकाम, साहिबगंज के युवक समेत 8 गिरफ्तार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पहली झारखंड T20 की नीलामी पूरी, ईशान से महंगे बिके रॉबिनमेंट। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, राज्यसभा चुनाव के लिए मंथन तेज। दैनिक जागरण और रांची एक्सप्रेस की लीड है, वैभव सूर्यवंशी को झारखंड सरकार बनाएगी स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में आकाशवाणी पर देशवासियों से करेंगे संवाद। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की हजारीबाग में दिशा की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश। राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन में मंथन तेज, झामुमो कांग्रेस के बीच राज्यसभा उम्मीदवार पर चर्चा, हेमंत सोरेन से फिर मिले तेलंगाना के डिप्टी सीएम। आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, साहिबगंज के युवक समेत 8 संदिग्ध गिरफ्तार। और आरडीसीए महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज रातू रोड 11 और रॉकमिल्स क्रिकेट एकेडमी के बीच होगी, खिताबी भिड़ंत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।
3: प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

एफएम की 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। फिल्म संगीत, ये कार्यक्रम सुनिएगा बस थोड़ी ही देर में।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज 31 मई है। हर साल 31 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य तंबाकू के सेवन से होने वाले घातक स्वास्थ्य प्रभावों, बीमारियों और इसके कारण होने वाले मौतों के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा तंबाकू की खपत को कम करने वाली नीतियों की वकालत करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें।

दोस्तों, तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होता है। तंबाकू के सेवन से कैंसर, सांस लेने की बीमारियां और दिल का दौरा जैसी जानलेवा समस्याएं आती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में तंबाकू के सेवन से हर साल 80 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवाते हैं। ऐसे में ये बेहद आवश्यक है कि इन चीज़ों से हम दूरी बनाकर रखें। जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, जीवन के जिम्मेदारियों के प्रति अपनी जवाबदेही तय करें।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में आज जिन फिल्मों के गाने आपने सुने वो थे साथी और अनजाना अनजानी। आवाजें कुमार सानू और राहत फतेह अली खान की थी। गीतकार थे समीर और विशाल दादानी। संगीत था नदीम श्रवण और विशाल शेखर का। और अब इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब समाचार सुनेगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपये प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपये प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम जाएंगे। वे कोटायम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति कन्नूर में राज्यसभा सांसद सी सदानंद मास्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, विदर्भ के कुछ स्थानों पर बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी समाचार बुलेटिन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। हमारा ये प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 9:05 और 30 सेकंड हुए हैं। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना सुनिएगा बस थोड़ी ही देर में।

0: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
0: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
0: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से।
0: ये लो यार, यूपीआई ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: जलवायु परिवर्तन हम क्या कर सकते हैं? यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन लोगों के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है और इससे बचने के लिए तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। सरकारों को उत्सर्जन घटाने और जलवायु के प्रभाव से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए। आम लोगों से लेकर इंडस्ट्रीज तक सबकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। कोयला, तेल और गैस का कम इस्तेमाल बहुत जरूरी है। कई देश अब भी इन पुराने ईंधनों पर निर्भर है, लेकिन वे साफ ऊर्जा अपनाने की पहल कर सकते हैं। निजी क्षेत्र, खासकर ऊर्जा, फैक्ट्री और खेती से जुड़े व्यवसायों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वे धरती को बचाने में मदद करें। क्या आप जानते हैं 191 देश पेरिस समझौते का हिस्सा हैं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जा सके।
1: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान,
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
1: नमस्कार जमशेदपुर।
4: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 MHz पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मन भावन कार्यक्रम से।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरंजना। रविवार विशेष सुरंजना में आज सुनी शीर्षक गीत। ख्वाबों की वादियों से, पलकों के किनारों से मोहब्बत के कई रंगीन एहसास गुजरते हैं। इन्हीं एहसासों को समेटे कार्यक्रम शीर्षक गीत के साथ हम उपस्थित हैं। स्वीकार करें अपनी दोस्त पूनम श्रीवास्तव का मोहब्बत भरा नमस्कार।

अश्कों की तबस्सुम में, आहों की तरन्नुम में मासूम मोहब्बत का मासूम सा फसाना है। बस चाहत इतनी है कि सहारा मिल जाए दीद तेरी बेपनाह मोहब्बत का।

आप आई बाहर आई, इस फिल्म का गीत आपने सुना। आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अपने एहसासों से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो। तुम हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो, अपनी आंखों में मेरे नाम का काजल भर लो। बस इतनी सी चाहत भरी नजरों से तुम्हें हम देखते हैं।

बाहर आने तक इस फिल्म का गीत आपने सुना, पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें थी। गीत के बोल लिखे थे इब्राहिम अश्क ने और इसे संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने।

मोहब्बत का सफर आसान नहीं होता, ये वो जज्बा है जो हमेशा कामयाब नहीं होता। तलखियां इसमें बहुत हैं, मजा कुछ भी नहीं, जिंदगी दर्द मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं।

लता मंगेशकर की आवाज़ में महबूब की मेहंदी, इस फिल्म का गीत आपने सुना। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गाने के साथ ही कार्यक्रम सुरंजना अब यहीं संपन्न होता है। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। सुरंजना के तहत आप सुन रहे थे शीर्षक गीत। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम पल्लव।

0: जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
0: सभी श्रोता बच्चों का कार्यक्रम में स्वागत और पल्लव के आज के इस अंक के साथ मैं हमेशा की तरह आपकी सीमा दीदी। बच्चों आइए आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा बता दें। अभी आपकी छुट्टियां चल रही हैं, ऐसे में आपके पास समय ही समय है। समय का सही सदुपयोग तब होगा जब आप अनुशासित होंगे। हमारे जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, इस बारे में आज बातें करेंगे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। तंबाकू सेवन स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकारक है, इस बारे में भी आज के कार्यक्रम में चर्चा होगी। साथ ही अजय कुमार सामंत राय की वार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे। विषय होगा जल संरक्षण में बच्चों का योगदान। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें। बच्चों अनुशासन को किसी भी व्यक्ति के जीवन में विकास का मार्ग माना जाता है, फिर भी बहुत से लोग जीवन भर अनुशासित नहीं रह पाते। इसलिए हमें बचपन से ही अनुशासन के महत्व के बारे में जानना जरूरी है। विद्यार्थी जीवन को आकार देने में अनुशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और व्यक्तिगत विकास का साधन बनता है। ये जिम्मेदारी, एकाग्रता और प्रतिबद्धता की भावना पैदा करता है, जिससे विद्यार्थी अपने शैक्षणिक और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं। बच्चों छात्र जीवन में अनुशासन आत्मनियंत्रण निरंतरता और जिम्मेदारी का संयोजन है, जिसमें दिनचर्या का पालन करना, कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय का प्रभावी प्रबंधन शामिल है। इसका अर्थ है ऐसे निर्णय लेना जो आपको विकास की ओर ले जाए, जैसे समय पर कार्य पूरा करना, नियमों का पालन करना और क्षणिक सुख के बजाय दीर्घकालिक सफलता को प्राथमिकता देना। इसके लिए जरूरी है आत्म अनुशासन, शैक्षणिक अनुशासन और व्यवहारिक अनुशासन। बच्चों क्या आप जानते हैं अनुशासन आपको समय के साथ निरंतरता विकसित करने में सक्षम बनाता है, जिससे आपको वो काम करने में मदद मिलती है जो काम आपको पसंद नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि वो कार्य करना कितना महत्वपूर्ण है, जैसे कि होमवर्क करना, परियोजनाओं को समय पर पूरा करना और परीक्षा की तैयारी करना। जीवन में जब आप अनुशासित होते जाते हैं तो समय पर सभी दैनिक कार्य निपटाते हैं और वो कार्य आपकी आदत बन जाते हैं। इससे आप में आत्मविश्वास बढ़ता है, विषय सरल और आनंददायक हो जाते हैं, पढ़ाई में बेहतर अंक प्राप्त होते हैं। इससे एक सुगठित व्यक्तित्व का निर्माण करने और करियर में विकास जैसे दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। अनुशासन न केवल आपकी शैक्षणिक सफलता में सहायक होता है, बल्कि ये आपके व्यवसाय या नौकरी में भी सफलता को प्रभावित करता है। आप जब अनुशासन का पालन करना सीख जाते हैं, तब आप स्कूल के दिन हो या छुट्टी हो, नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। जीवन में अनुशासित रहने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं। जैसे अपने दिनचर्या में नियमितता लाने के लिए पढ़ाई, सोने, खाने और आराम करने के लिए निश्चित समय निर्धारित करने चाहिए। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे प्राप्त करने योग्य कार्यों में विभाजित करें, ताकि आप उस पर केंद्रित रहें। हमेशा पढ़ाई करते समय अपना फोन दूर रखें, नोटिफिकेशन बंद कर दें और पढ़ाई के लिए एक ऐसा स्थान चुनें जहां बिल्कुल शांति हो, कोई व्यवधान ना हो। अपनी किताबें, नोट्स और अध्ययन सामग्री को व्यवस्थित रखने से आपको उन्हें खोजने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, इसका हिसाब रखने के लिए टाइम टेबल जरूर बनाएं। पढ़ाई और आराम के बीच संतुलन बना रहे, इसलिए कुछ समय का ब्रेक जरूर लेना चाहिए। दिमाग को तरोताजा और एकाग्र रखने के लिए संतुलित पौष्टिक भोजन लें, पर्याप्त नींद के साथ नियमित रूप से व्यायाम भी जरूर करें। बच्चों अनुशासन आप विद्यार्थियों के प्रारंभिक वर्षों में बनने वाली सबसे मजबूत नींवों में से एक है। इससे आप में निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। चुनौतियों के दौरान भी आप शांत और आत्मविश्वास से भरपूर रहते हैं। माता पिता और शिक्षकों के सही मार्गदर्शन से आप भविष्य की सफलता के लिए तैयार, केंद्रित और सक्षम होते हैं। तो बच्चों अनुशासन में रहकर ही हम सफलता की उड़ान भर सकते हैं।

और अब कुछ गौर करने योग्य बातें। आज हमारे देश में स्कूली बच्चों के बीच तंबाकू सेवन तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार लगभग 8% स्कूली बच्चे इसकी गिरफ्त में हैं। बच्चों और किशोरों के बीच तंबाकू और निकोटिन की बढ़ती लत को लेकर विशेषज्ञों ने गंभीर चिंता जताई है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि तंबाकू के धुएं में 7000 से अधिक रसायन होते हैं, जिनमें से सैकड़ों हानिकारक होते हैं और 70 कैंसर का कारण होते हैं। हमारे देश में तंबाकू का उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। इसका उपयोग धूम्रपान, चबाने वाले, दांतों पर लगाने और यहाँ तक कि नाक के माध्यम से सांस लेने में भी किया जाता है। किसी भी रूप या मात्रा में सभी प्रकार के तंबाकू का सेवन हानिकारक है। बच्चों में तंबाकू का उपयोग शुरू करने का कारण उन्हें हमेशा नए प्रयोग करने की इच्छा होती है। वे

हमेशा कुछ नया और रोमांचकारी करना चाहते हैं और इसलिए उन्हें लगता है कि तंबाकू को आजमाने से उनका ये उद्देश्य पूरा होगा। लेकिन बच्चों, आप रोमांच के लिए अन्य स्वस्थ विकल्पों के बारे में सोच सकते हैं। तैराकी, पर्वतारोहण, साइकिल चलाना, फुटबॉल जैसे खेलों में संलग्न होना शरीर को उत्साह और व्यायाम प्रदान कर सकता है। पढ़ना, पेंटिंग, गायन, नृत्य, अभिनय जैसे शौक आपकी रचनात्मकता को बढ़ाते हैं और ये मजेदार भी होंगे। दोस्तों का प्रभाव भी बच्चों को नशे की ओर धकेल देता है। उन्हें लगता है कि उनके दोस्त जो कहते हैं और करते हैं उसका अनुसरण नहीं किया तो उन्हें दोस्तों के समूह द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो दोस्त आपको नशा करने के लिए प्रेरित करते हैं बच्चों, वो आपके दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। क्या आप जानते हैं, कम उम्र में नशा करना आपको गंभीर बीमारी दे सकती है और अल्पायु कर सकती है। आपको दोस्ती सोच समझकर ही करनी चाहिए, ना समझ आए तो बड़ों से मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। बहुत से लोग और बच्चे भी ग्लैमर की दुनिया से प्रभावित हैं। वे फिल्मी सितारों को धूम्रपान करते देखते हैं, उनकी नकल करने की कोशिश में ग्लैमरस और आकर्षक दिखने के चक्कर में नशे की ओर कदम बढ़ाते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में धूम्रपान पर प्रतिबंध है और तंबाकू कंपनियां किसी भी खेल के आयोजन को प्रायोजित नहीं कर सकती। तंबाकू सेवन या धूम्रपान हमारे शरीर में फेफड़े, दिल और दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे मस्तिष्क के विकास में बाधा, ध्यान और याददाश्त की कमी, हृदय रोग, कैंसर जैसे गंभीर रोगों के शिकार हम हो सकते हैं। इसलिए बच्चों, नशे की लत बहुत बुरी लत है, तो जल्द से जल्द इसे छोड़ने का दृढ़ निर्णय लें, स्वस्थ जीवन को चुने और जीवन से प्यार करें। तंबाकू सेवन हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है, बच्चों इस विषय पर अभी हम विशेष चर्चा कर रहे थे। और अब चले संगीत की दुनिया में।

0: बच्चों, जल ही जीवन का आधार है। पानी बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जल की हर बूंद अनमोल है। इसे हम अगर आज बचाते हैं तो आने वाला भविष्य सुरक्षित होता है। जल संरक्षण में बच्चों का योगदान, आइए इसी विषय पर अजय कुमार सामंत राय से और जानकारी प्राप्त करते हैं।
1: नमस्कार बच्चों, आज हम आपसे जल संरक्षण और उसके महत्व के बारे में बात करेंगे। बच्चों, क्या आपको पता है कि प्रकृति ने हमें जीवन जीने के लिए कई कीमती उपहार दिए हैं। वायु और जल उनमें से सबसे कीमती उपहार हैं। हम अपने जीवन में इनका उपभोग करते हैं। वायु का तो हम सांस लेकर उपभोग करते हैं, मगर जल तो हम पीते भी हैं, जल से नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। इसके अलावा भी भोजन बनाने तथा अन्य कई कामों में हम जल का भरपूर उपयोग करते हैं। प्यासे के लिए जल अमृत है तो फसलों के लिए वरदान। फसलों को यदि सही समय पर पानी न मिले तो देश में खाद्य संकट पैदा हो जाता है, और अगर समय पर बारिश न हो तो देश में अकाल पड़ जाता है। आप समझ सकते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी 70% पानी ही है। तो बच्चों, क्या मैं उम्मीद करूं कि आप लोग जीवन में जल का महत्व समझ गए होंगे? शाबाश। तो जब जल इतना महत्वपूर्ण है तो हमें आपको उसका संरक्षण जरूर करना चाहिए। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जल संकट हमारे देश में कितना भयावह है? क्योंकि बिना उसकी भयावहता जाने आप संरक्षण के लिए गंभीर नहीं हो सकते। बच्चों, आप यह तो जानते ही होंगे कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से भरा है, फिर भी पीने योग्य पानी सिर्फ 3-4% ही उपलब्ध है, जो नदियों, झीलों, तालाबों तथा जमीन के अंदर है। आजकल डीप बोरिंग का जमाना है और हर जगह डीप बोरिंग करके पानी निकाला जाता है। इस अंधाधुंध पानी निकासी के कारण जलस्तर काफी नीचे चला गया है। सिर्फ जमशेदपुर में ही जलस्तर 4.50 मीटर नीचे गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे झारखंड और पूरे देश में जलस्तर कितना नीचे गया होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि समय पर बारिश नहीं हो पा रही, कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि। जल संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। आज वृक्षों की अंधाधुंध कटाई एक बड़ी समस्या है। क्या आपको पता है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या वृक्षों की कटाई से ही उत्पन्न हुई है। आप लोगों ने तो किताबों में पढ़ा ही होगा कि पेड़ों की डालियां झूम झूम कर बादलों को बरसने का न्योता देती है, जिससे बारिश होती है। अगर जंगल ही न रहे तो बारिश किस तरह होगी? एक तरफ तो बारिश नहीं हो रही, दूसरी तरफ उसका उचित संरक्षण नहीं होने के कारण जल संकट उत्पन्न हो रहा है। हमारे समक्ष एक गंभीर समस्या पानी की बर्बादी है। एक तरफ तो हम साफ और स्वच्छ जल को गंदा करते हैं, साथ ही दूसरी तरफ जो पानी उपलब्ध है उसे भी बर्बाद करते हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों, हमारा इस्तेमाल किया हुआ पानी नालियों से होकर नालों में मिश्रित होता है, और वही पानी नालों से होता हुआ नदी में गिरता है। इससे दो नुकसान होते हैं। एक तो गंदा पानी साफ और स्वच्छ जल को प्रदूषित करता है, दूसरा बहुत सारा पानी जो कि पीने के अलावा अन्य कई कामों में प्रयोग किया जा सकता था, बेजा नष्ट हो जाता है। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि जल संकट कितना भयावह और विकराल रूप धारण कर चुका है। यह तो रही समस्या की बात। अब बात यह है कि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी होगा, और अगर समाधान है तो झटपट ढूंढ कर निकालना भी होगा, नहीं तो समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। तो बच्चों, अब जल संकट से निपटने तथा उसके समाधान में आपके योगदान की हम चर्चा करेंगे। जो लोग बड़े हैं वे तो रोजी रोटी के फिक्र में तथा बाकी जिम्मेदारियों से इस कदर दबे हुए हैं कि चाह कर भी इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते। बच्चों, आप लोग हमारे आने वाले भविष्य हैं, इसलिए आप ही से हम उम्मीदें रखेंगे। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि गांधी जी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन हुआ था, उसमें उन्होंने बच्चों की एक वानर सेना बनाई थी जो असहयोग आंदोलन का प्रचार करता था। प्रख्यात पर्यावरणविद स्वर्ग या अनुपम मिश्र ने बच्चों के अंदर एक जल सेनानी पैदा करने की बात की है। अगर हर एक बच्चे के अंदर एक जल सेनानी पैदा हो जाए तो जल संरक्षण बहुत बड़े आंदोलन में बदल जाएगा। बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं, देश के उत्तर पूर्वी इलाकों में पानी की भारी कमी है तथा वहाँ वर्षा के जल का संरक्षण किया जाता है। क्योंकि वर्षा का पानी वायु प्रदूषण के चलते पूरी तरह शुद्ध नहीं होता, इसलिए मेघालय जैसे राज्यों में चाय की पत्ती के साथ पानी को उबाल कर पीने योग्य बनाया जाता है। देखो बच्चों, जल संरक्षण के कई उपाय हैं, मगर हमें चर्चा इस बात पर करनी है कि आप बच्चे किस तरह इस अभियान में हिस्सा ले सकते हैं तथा आप लोग किस किस तरह इसमें योगदान दे सकते हैं। ऐसा है कि जागरूकता और सतर्कता ही किसी बर्बादी से बचा सकती।
0: जल संरक्षण में बच्चों का योगदान, अजय कुमार सामंत राय की ये वार्ता अभी आप सुन रहे थे। और बच्चों, अब आइए अजेता श्री कन्नौजे की आवाज में ये गीत सुनते हैं।

बच्चों, अजेता श्री कन्नौजे की आवाज में अभी आप ये देशभक्ति गीत सुन रहे थे। बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है इस बारे में आपको बताया, तंबाकू सेवन स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकारक है इस बारे में आपने जाना, जल संरक्षण में बच्चों का योगदान इस विषय पर अजय सामंत राय की वार्ता आपने सुनी, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता स्थिर चैम्पी। और इसके साथ ही बच्चों, आज का कार्यक्रम बस यहीं तक, सीमा दीदी को दीजिए अनुमति। जय हिंद बच्चों।

0: बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम पल्लव अभी आप सुन रहे थे।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
3: 8700001424।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे पहले हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर विश्व दर्पण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
2: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
1: नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को आज नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक प्रयासों की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। श्री लाइन व्यापारिक मंच को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंट तथा अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होगा और 15 जून तक लागू रहेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। वे कोट्टायम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति कन्नूर में राज्यसभा सांसद C. सदानंद मास्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मेधा, करुणा और जन कल्याण के प्रति अटूट समर्पण के लिए आदर और सम्मान के साथ याद करता है। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Tanvi Khurana.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति ओम मिन ऑनलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। बिहार के गया जी में कल महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन हमले पर चिंता व्यक्त की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला वायरस के प्रकोप के बीच यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया। कोलंबिया में आज राष्ट्रपति पद के लिए के चुनाव के लिए मतदान। और बैडमिंटन सिंगापुर ओपन के पुरुष डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ओम मिन ऑनलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया जी के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्रीलाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक राफेल गौसी ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या परमाणु बिजली संयंत्र में टरबाइन बिल्डिंग पर ड्रोन हमले की खबर के बाद चिंता प्रकट की है। IAEA ने बताया कि टरबाइन बिल्डिंग पर ड्रोन हमले से उसकी दीवार में छेद हो गया। IAEA की टीम ने नुकसान का जायजा लेने के लिए उस इलाके में जाने की अनुमति मांगी है। एक रिपोर्ट।
1: महानिदेशक राफेल गौसी ने चेतावनी दी है कि परमाणु केंद्रों पर या उसके आसपास होने वाले किसी भी हमले से गंभीर खतरा पैदा होता है। उन्होंने कहा कि ऐसी जगहों को किसी भी हाल में निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। रूस के सरकारी परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम ने कहा कि कल यूक्रेनी ड्रोन ने यूनिट 6 के टरबाइन आइलैंड पर हमला किया। इससे एक ढांचे को नुकसान पहुंचा है, लेकिन मुख्य उपकरणों पर कोई असर नहीं पड़ा। अभी किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। ज़ापोरिज़्या संयंत्र यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक है। यह मार्च 2022 से रूस के नियंत्रण में है। IAEA ने इस स्थल के आसपास सैन्य गतिविधियों से होने वाले खतरों के बारे में बार बार चेतावनी दी है और परमाणु बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की मांग की है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधोनाम गेब्रेसियस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधोनोम का मत है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। पूर्वी कांगो के बुनिया में उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के प्रतिबंध बीमारी के नियंत्रण को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम पारदर्शिता और आपसी विश्वास को भी कमजोर करते हैं। कांगो में स्वास्थ्य अधिकारियों ने इबोला के 900 से अधिक संदिग्ध मामलों और 220 से अधिक संदिग्ध मौतों की जानकारी दी है। और पड़ोसी देश युगांडा की राजधानी कंपाला में नए संक्रमण सहित कुल 900 मामलों की पुष्टि हुई है। अधिकारियों के अनुसार ये प्रकोप इबोला के बुंडी बुगियो स्ट्रेन से संबंधित है। इसके लिए फिलहाल कोई स्वीकृत टीका और विशेष उपचार उपलब्ध नहीं है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष

0: पहले वामपंथी राष्ट्रपति हैं। सत्तारूढ़ वामपंथी गठबंधन की ओर से सीनेटर इवान सेपेडा मुख्य उम्मीदवार हैं। वे पेट्रो की सामाजिक और आर्थिक नीतियों तथा देश में शांति स्थापित करने की उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाने का वादा कर रहे हैं। वहीं दक्षिणपंथी उम्मीदवार एबलार्डो डेला एस्प्रियला कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर सीनेटर पालोमा वालेंसिया सुरक्षा और आर्थिक विकास पर आधारित रूढ़िवादी नीतियों के साथ मतदाताओं का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेक्सेथ ने भारत को क्षेत्रीय स्थिरता का एक प्रमुख स्तंभ बताया है। उन्होंने सिंगापुर में आयोजित शांग्रीला संवाद में भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संतुलन का महत्वपूर्ण आधार बताया। श्री हेक्सेथ ने भारत के सैन्य आधुनिकीकरण और रक्षा औद्योगिक क्षमताओं की भी खुलकर प्रशंसा की। श्री हेक्सेथ ने कहा कि भारत और अमरीका सैन्य तैयारियों को बढ़ाने के लिए संयुक्त उत्पादन पहलों पर काम कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने संबंधी प्रस्तावित समझौते के बीच ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 1.73% गिरकर $87.36 प्रति बैरल पर बंद हुआ, जबकि ब्रेंट 1.77% गिरकर $92.05 प्रति बैरल पर स्थिर रहा। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों ने AUKUS सुरक्षा समझौते के तहत सैन्य क्षमता बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा मजबूत करने और समुद्र के भीतर केबल की सुरक्षा के लिए पानी के नीचे ड्रोन तकनीक विकसित और तैनात करने की संयुक्त भागीदारी की घोषणा की। इन नेताओं ने सिंगापुर में आयोजित शंग्रीला संवाद सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि अंडरसी व्हीकल UUV तकनीक के अगले वर्ष तक तैयार होने की संभावना है। ये सेंसर शस्त्र प्रणाली और अन्य क्षमताओं से युक्त होगी और समुद्र की तलहटी में बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करेगी, निगरानी रखेगी तथा सैन्य अभियानों में मदद करेगी। रूस ने आर्मेनिया में अपने राजदूत सर्गेई कोपेरिकिन को परामर्श के लिए मॉस्को वापस बुला लिया है। 7 जून को होने वाले चुनाव से पहले यूरोपीय संघ के साथ संबंध मजबूत करने के आर्मेनिया के प्रयासों को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर ऐसा किया गया है। और अब खबरें खेल जगत से।
2: सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का सामना इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजल अल्फियान से होगा। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जोड़ी को हराया था। फुटबॉल में पेरिस सेंट जर्मन PSG ने लगातार दूसरी बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है। बुडापेस्ट में फाइनल में PSG ने आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। और अब बात करें महिला क्रिकेट की, तो ब्रिस्टल में खेले गए T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। इसके अलावा IPL क्रिकेट के फाइनल में आज गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ओम मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। बिहार के गया जी में कल महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन हमले पर चिंता व्यक्त की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला वायरस के प्रकोप के बीच यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देश से अपने फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया। कोलंबिया में आज राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

विश्व दर्पण अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। सुबह के 10:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत, बस थोड़ा सा इंतजार।

0: कौन है बॉस? रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी, वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 MHz पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 06572960445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

बजरंगी भाईजान इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी जुबिन नौटियाल, प्रीतम चक्रवर्ती, राहत फतेह अली खान और रेखा भारद्वाज का। गीत की बोल लिखे थे नीलेश मिश्रा ने और इसे संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने।

श्रेया घोषाल की आवाज में द बॉडी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीत रचना कुमार की थी और संगीत था समीर टंडन का। श्रोताओं, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: बड़ी बहू
1: ये तुम्हारे नाम,
0: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम,
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के
4: नाम। दादी आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो
4: क्या
6: आरबीआई कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
0: हेलो डॉक्टर,
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर,
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ।

0: तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

जमाना दीवाना इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें थी। गीत की बोल समीर की थी और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने।

विपिन सचदेवा और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में जुनून फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीत रचना समीर की थी और संगीत था नदीम श्रवण की। और अब आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में प्यासा सावन फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है संतोष आनंद ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोता, इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:55 होने को है। आइए शामिल होते हैं दिल्ली के प्रसारण में, जहां से आप सुनेंगे 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जनता के साथ मन की बात।

0: कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध न हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए

0: भक्ति से आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: बोल बोल के थक गया।
5: क्या हुआ?
4: नया किट बैग चाहिए।
5: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
4: करेक्ट।
5: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किट बैग।
6: RBI कहता है
0: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
7: पर्सनल लोन ऑफर
8: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
7: फ्री ट्रिप टू दुबई
8: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
9: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
8: तो क्या करूं?
9: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
8: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
9: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
10: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
11: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
12: नमस्कार सर। नमस्कार।
13: नमस्कार सर।
11: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
6: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड ख़त्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
11: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
12: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है। तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था भी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा भी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया भी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
11: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
12: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
11: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया। तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
12: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
11: अनिमेश जी,
6: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
11: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले एनिमेश बता दे।
6: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर भैया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
11: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
12: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
11: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
12: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
11: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना, वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है। और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है,

भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजिब वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहाँ अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस

एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाए। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब, कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही।

0: श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी एक साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जनता के साथ मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और संस्कृत में। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे भावगीत, लेकर हाजिर होंगे हम बस कुछ ही पलों में।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

भावगीत के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बेहद स्वागत और आपकी रेडियो दोस्त रिंकी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारी अपनी जिंदगी एक किताब की तरह है जिसमें हर दिन एक नई कहानी जुड़ती रहती है। जैसे जैसे नया पन्ना पलटता है, कुछ नए किरदार मिलते हैं, कुछ पुराने बिछड़ जाते हैं, लेकिन कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ना चाहते हैं, वही पन्ने जिन्हें हम मोहब्बत कहते हैं। क्योंकि जिंदगी की कहानी कुछ ऐसी है कि गैरों को सुनाई नहीं जाती और अपनों से छुपाई नहीं जाती।

चाहे वो चाय की चुस्कियों पर किसी का इंतजार करना हो या फोन की स्क्रीन पर यूं ही बेवजह किसी को ताकते रहना और मुस्कुरा जाना। क्या ये सिर्फ एक एहसास है या फिर ये किसी बड़ी कहानी की छोटी सी शुरुआत है?

जिंदगी में कई बार हर चाहत को दिल मोहब्बत समझ बैठता है, क्योंकि कई बार ये दिल असली मोहब्बत को पहचानने में भूल कर बैठता है। तब ये बात समझना बहुत जरूरी

हर कहानी एक का मुकम्मल होना जरूरी नहीं होता। कुछ कहानियाँ सिर्फ इसलिए खूबसूरत होती हैं क्योंकि वो कभी पूरी नहीं हो पाती। वो कहते हैं ना, वो जो अधूरी सी बात आज भी अपने दरमियाँ बाकी है, मेरे दिल में तेरी वो सौगात आज भी बाकी है। कहते हैं लोग खत्म हो गई है अपनी कहानी, लेकिन मेरे ख्यालों में तो आज भी तू बाकी है।

0: श्रोताओं, आज के भावगीत के सफर में हमने जिन फिल्मों को शामिल किया उनके नाम हैं हमारी अधूरी कहानी, क्रिश, मर्डर टू और कसूर। इनमें आवाजें थी सोनू निगम, श्रेया घोषाल, मोहम्मद इरफान, सैम भट्ट, कुमार शानू और अलका याग्निक की। इसी के साथ आज के कार्यक्रम भावगीत से दीजिए अपनी रेडियो दोस्त रिंकी को विदा। लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 12:30 हुए हैं श्रोताओं, अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे महिलाओं के लिए, कार्यक्रम अंगना।
1: दिनों बाद।
2: हाय यार, अच्छा सुन, दाढ़ी
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाय यार, अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से।
2: ये लो यार, यूपीआई ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: अंगना, महिलाओं का कार्यक्रम अपना अंगना।

0: अंगना के सभी श्रोताओं को दोस्त और बहन जयश्री का प्यार भरा नमस्कार जोहार। बहनों, जिंदगी में हर किसी को किसी न किसी चीज का नशा होता है। किसी को खुशी का, किसी को घूमने का, किसी को काम करने का, किसी को मोहब्बत का, तो किसी को किसी और चीज का। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें तंबाकू या फिर निकोटिन, इन सब का भी नशा होता है। और आपको बता दूं बहनों कि ये जो नशा है तंबाकू और निकोटिन का, ये नशा का असर जो है केवल व्यक्ति के शरीर तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि ये उसके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। ये नशा हमारे लिए बहुत खतरनाक है और इसलिए आज के दिन पूरी दुनिया मनाती है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और इसका उद्देश्य ही है बहनों, लोगों को तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले गंभीर नुकसानों के प्रति जागरूक करना और उन्हें नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। मैंने हर साल इसका एक थीम होता है और इस साल जो थीम है 2026 का, जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम है, वो है अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन, यानी आकर्षण का पर्दाफाश निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला करें। बहनों, तंबाकू और निकोटिन उद्योग लगातार नए नए तरीकों से फ्लेवर्ड ई सिगरेट, निकोटिन पाउच, आकर्षक पैकेजिंग और सोशल मीडिया के जरिए नई पीढ़ी यानी कि बच्चों और युवाओं को इसके जाल में फंसा रहे हैं। इस साल की थीम का मुख्य उद्देश्य इन भ्रामक और आकर्षक तरीकों के पीछे छिपे जानलेवा सच को बेनकाब करना और युवाओं को जागरूक बनाना है। बहनों, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो इस नशे के कारण हम कई प्रकार के कैंसर का शिकार हो सकते हैं, चाहे हम धूम्रपान करें या फिर चबाएं। मुंह, गले, फेफड़े, भोजन की नली और पेट का कैंसर का सबसे बड़ा कारण होता है ये तंबाकू। बहनों, तंबाकू और इससे बने उत्पाद रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही फेफड़े कमजोर होने से सांस की गंभीर बीमारियां होती हैं। नशा शुरुआत में तनाव कम करने का भ्रम पैदा करता है, लेकिन धीरे धीरे ये व्यक्ति को डिप्रेशन, अत्यधिक चिंता और गंभीर मानसिक चिड़चिड़ेपन की ओर धकेलता है। और नशीले पदार्थों की लत से बहनों, व्यक्ति की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बीमारियों के इलाज और नशे को खरीदने में बर्बाद हो जाता है, जिससे परिवार कर्ज के जाल में फंस जाता है और साथ ही घरेलू कलह, रिश्तों में दूरी और समाज में प्रतिष्ठा का घटना भी शुरू हो जाता है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के आसपास रहने वाले परिवार के निर्दोष सदस्यों, खासकर बच्चे और गर्भवती महिलाओं को भी वैसी ही गंभीर बीमारियां होने का खतरा रहता है। नशे की गिरफ्त से बाहर निकलने और समाज को बचाने के लिए चौतरफा प्रयास की आवश्यकता है। बहनों, दोस्तों या सहकर्मियों के दबाव में आकर कौतूहलवश नशे को कभी भी हाथ ना लगाएं। जब भी नशे की तलब उठे तो सौंफ, इलायची या चिंगम चबाएं या फिर पानी पीकर अपना ध्यान भटकाएं। योग, प्राणायाम, व्यायाम और अपनी पसंद के शौक को समय दें ताकि मानसिक तनाव कम हो। बहनों, माता पिता अपने बच्चों, विशेषकर किशोरों के बदलते व्यवहार पर नजर रखें और उनसे दोस्ताना माहौल में नशे के दुष्प्रभावों पर बात करें। डॉक्टर की सलाह से निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी और नशा मुक्ति केंद्रों की मदद ली जा सकती है। भारत सरकार की नशा मुक्ति हेल्पलाइन 1811-2356 पर कॉल करके मुफ्त परामर्श लिया जा सकता है। बहनों, हमें सिर्फ धूम्रपान को ही नहीं रोकना है, तंबाकू को ही नहीं रोकना है, बल्कि नए जमाने के डिजिटल विज्ञापनों और फ्लेवर्ड ई सिगरेट जैसे नए छलावों से अपने बच्चों को बचाना है। इसलिए आज के दिन हम सब ये संकल्प लें कि खुद को और अपने परिवार को तंबाकू मुक्त बना कर रहेंगे। और जब बात मैं नशे की कर रही थी तो हमको तो नशा है मोहब्बत का, ये बड़ा ही एक चुलबुला सा गीत है ज्वालामुखी फिल्म में, वो मुझे याद आया। तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज में ये मस्ती भरा गीत।
1: पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नशा,
2: तो फिर
1: हमको तो नशा

0: से शादी शेख चिल्ली का ये ख्वाब अरे एक जर्रे की ये जुर्रत छूना चाहे आफताब।
1: किबला खादिम पे न कीजिए इस कदर गुस्सा फिजूल, मैं हूँ आशिक इश्क में मरना भी है मुझको कबूल।
0: तो मरेगा?
1: हाँ जी मरेगा।
0: ये जो कहेगी करेगा?
1: हाँ जी करेगा करेगा।

0: बाप कहूंगा। गधे को कहे बाप तो मैं बाप कहूंगा, फिर आपको भी आप नहीं बाप कहूंगा।
1: What?
0: ये जो कहे

0: जनाब।
1: अबे उल्लू, उल्लू रे, अबे उल्लू, तू मरने को ले आ पानी भर चुल्लू, मुझे अपनी बेटी के लिए लगाम चाहिए, ना के कोई चोरू का गुलाम चाहिए।
2: वल्ला बुजुर्गवार की ये बात सही है, तुलसी ने भी रामायण में ये बात कही है।
1: क्या बात कही है लल्लू।

0: घर पे मेरे फिर चलेगा मेरा ही रुआब, मेरा ही रुआब। जोरू का गुलाम फिर न कहिएगा जनाब, आहे जोरू का गुलाम फिर न कहिएगा जनाब।
1: ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक, अबे ओ बे पेंदी के लोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। यू शुड हैव गुड वुड अंडरस्टूड द डिसेंसी डेकोरम एंड द डिग्निटी ऑफ द हाउस। यू ब्लडी क्रूड एंड रूड, इतनी सी छूट क्या दी तू इतना गड़ गया। उंगली जरा पकड़ाई तो गर्दन पकड़ गया। मुझे अपनी बेटी का हाथ पीला कराना है, ना कि इसका बदन नीला कराना है। कम वक्त दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से।
2: नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। रग रग रंगी है मेरी मोहब्बत के रंग में, मरना है तो मरूंगा मोहब्बत की जंग में, मोहब्बत की जंग में, मोहब्बत की जंग में।
3: अरे अरे कोई है, कोई है, निकाल दो नमाकूल को लगा के धक्के, चार मारो चौके और छह मारो छक्के।

0: करूंगा। हथेली पे सर लेकर तेरे दर पे आया हूँ, तेरा दामाद बनूंगा, फैसला कर आया हूँ।
1: उल्लू
0: बनेगी तेरी छोकरी,
1: क्या
0: एक दिन मेरी दुल्हन, प्यार में टांग अड़ा मत, कबाबे हड्डी ना बन।
1: उल्लू
0: वैसे ना माना तो
1: नहीं,
0: उड़ा कर ले जाऊंगा तेरे जालिम पंजों से, उड़ा कर ले जाऊंगा, उड़ा कर ले जाऊंगा, ले जाऊंगा, ले जाऊंगा कैसे मेरा।

0: नशा है मोहब्बत का जनाब।
1: गो गो गो
0: नो नो नो
1: गो
0: नो
1: गो
0: नो
1: गो
0: नो।
2: बहनों, जब बात हम अपने बच्चों की किशोरों की कर रहे थे तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 4 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दिन हमें उन लाखों बच्चों के दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हिंसा या युद्ध की क्रूरता के शिकार होते हैं। अगर इसके इतिहास की बात करें बहनों, तो इसकी शुरुआत 19 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक आपातकालीन बैठक के दौरान इस दिन को मनाने का फैसला किया था। मूल रूप से इसकी शुरुआत 1982 के लबनान युद्ध और फिलिस्तीन संघर्ष में मारे गए और पीड़ित हुए मासूम बच्चों की याद में की गई थी। समय के साथ संयुक्त राष्ट्र ने इसका दायरा बढ़ाया। अब इसका उद्देश्य केवल युद्ध ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बच्चों के साथ होने वाली शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और यौन हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में लक्ष्य 16.2 विशेष रूप से बच्चों के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार, तस्करी और हर तरह की हिंसा को साल 2030 तक पूरी तरह समाप्त करने पर केंद्रित है। बच्चों के खिलाफ हिंसा केवल सीमाओं पर होने वाले युद्ध तक सीमित नहीं है बहनों, बल्कि इसके कई रूप हमारे आसपास भी मौजूद हैं। युद्ध के कारण लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बुनियादी सुविधाओं, भोजन, शिक्षा, दवा इन सब से महरूम हो जाते हैं और कई बार उन्हें बाल सैनिक बनने पर भी मजबूर किया जाता है। अब घर की बात अगर करें तो घर के भीतर माता पिता या अभिभावकों द्वारा की जाने वाली अत्यधिक मारपीट, गाली गलौज और मानसिक प्रताड़ना भी बच्चों के प्रति आक्रामकता है।

0: इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते दौर में साइबर बुलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न और बच्चों का डिजिटल शोषण हो रहा है। स्कूलों में डराया धमकाया जा रहा है या फिर कई बार करे शारीरिक दंड भी देखने को मिलते थे। बच्चों का मन बहनों बहुत संवेदनशील होता है। इन्हें इस आक्रामकता से बचाने के लिए माता पिता, शिक्षकों और समाज को मिलकर प्रयास करना होगा। बच्चों को बहुत कम उम्र से ही उनके शरीर पर उनके अधिकार के बारे में सिखाएं, उन्हें सहज भाषा में अच्छे और बुरे स्पर्श का अंतर समझाएं ताकि वे किसी भी अवांछित गतिविधि को तुरंत पहचान सके। घर और स्कूल में ऐसा माहौल बनाएं जहां बच्चा बिना किसी डर के अपनी बात कह सके। रोज बच्चों से उनके दिन भर के अनुभवों के बारे में बात कीजिए। अगर उनके व्यवहार में अचानक चिड़चिड़ापन, चुप्पी या डर दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। बच्चे इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं, इस पर पैरेंटल कंट्रोल एप्स के जरिए नजर रखना जरूरी है। उन्हें सिखाएं कि इंटरनेट पर अपनी निजी तस्वीरें या जानकारी किसी अजनबी के साथ साझा ना करें। डिजिटल दुनिया के खतरों जैसे कि साइबर बुलिंग के प्रति उन्हें जागरूक कीजिए। बच्चे वही सीखते हैं बहनों जो घर में देखते हैं। अगर माता पिता आपस में या बच्चों पर गुस्सा और शारीरिक बल का प्रयोग करेंगे तो बच्चे भी इसे सामान्य मानेंगे। अनुशासन के लिए मारपीट की जगह बातचीत का रास्ता चुनें। हर नागरिक, शिक्षक और माता पिता को बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानून जैसे कि भारत में पॉक्सो एक्ट है की जानकारी होनी चाहिए। किसी भी आपात स्थिति या बाल शोषण की शिकायत के लिए भारत सरकार की राष्ट्रीय चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 1098 जो कि टोल फ्री है पर तुरंत संपर्क किया जा सकता है। याद रखिए बहनों, बच्चे हमारे समाज की आत्मा और हमारा भविष्य हैं। किसी भी सभ्य समाज की पहचान इससे होती है कि वो अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है। आइए हम सब संकल्प लें कि हम अपने घर, स्कूल और समाज को बच्चों के लिए एक ऐसा सुरक्षित कोना बनाएंगे जहां डर और आक्रामकता की कोई जगह ना हो, केवल विकास और मुस्कान हो। चलिए इसी बात पर हम आपको अनिता झा की वार्ता सुनवाते हैं। विषय है बच्चों के अभिभावक बनने के साथ साथ उनके शिक्षक भी बनिए।
1: बच्चों के अभिभावक बनने के साथ साथ शिक्षक भी बनना एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह न केवल बच्चों के विकास में मदद करता है बल्कि माता पिता और शिक्षकों के बीच मजबूत संबंध भी बनाता है। बच्चे किसी भी समाज की नींव होते हैं। उनका निर्माण केवल स्कूलों और शिक्षकों के जिम्मे नहीं छोड़ा जा सकता। जब हम एक बच्चे के माता पिता बनते हैं तो हमारा दायित्व केवल उनके पालन पोषण तक सीमित नहीं रहता बल्कि हमें उनका प्रथम शिक्षक भी बनना होता है। आज के प्रतिस्पर्धा और तेजी से बदलते युग में केवल शैक्षणिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। नैतिकता, व्यवहार, अनुशासन और सामाजिक समझ जैसे मूल्य भी बच्चों में बचपन से ही विकसित करना जरूरी है। इसमें माता पिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। शिशु जन्म से ही अपने परिवेश से सीखना शुरू कर देता है। उसका पहला स्कूल उसका घर होता है और उसके पहले शिक्षक माता पिता होते हैं। बच्चे अपने माता पिता की हर बात, हर हरकत और हर निर्णय को बारीकी से देखते हैं और वही उनकी आदतों में बदल जाता है। यदि माता पिता समय पर कार्य करते हैं, अनुशासित जीवन शैली अपनाते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं तो बच्चा भी वही सीखता है। हर माता पिता की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनका बच्चा न केवल पढ़ाई में कुशल हो बल्कि एक शिष्ट, जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक के रूप में भी पहचाना जाए। यह लक्ष्य केवल पढ़ाई या अनुशासन से नहीं प्रारंभिक जीवन में मिले संस्कारों से पूरा होता है। बच्चों में अच्छा व्यवहार, भावनात्मक समझ और सामाजिक कौशल विकसित करना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें माता पिता की भूमिका केंद्रीय होती है। कुछ व्यावहारिक, संवेदनशील और असरदार उपायों से आप अपने बच्चों के अंदर ये बीज बो सकते हैं। जैसे जब बच्चा स्कूल से लौटे या दिन भर की थकान के बाद आपसे मिलने आए तो मुस्कान के साथ उससे मिलिए, उसे पुचकारिए, हाल पूछिए। यह छोटा सा भाव उसे ये एहसास दिलाता है कि वह आपके लिए विशेष है। इससे बच्चे में आत्मविश्वास और पारिवारिक जुड़ाव की भावना विकसित होती है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने परिवेश में देखते हैं। यदि आप किसी ड्राइवर, सेल्समैन या घरेलू सहायक से सौम्यता और सम्मान से बात करेंगे तो बच्चा भी वही रवैया अपनाएगा। दूसरों की मदद, विनम्र भाषा का प्रयोग और धैर्यशील व्यवहार खुद भी अपनाएं। अगर घर में दादा दादी या नाना नानी है तो बच्चों को उनके साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे बच्चे में पारिवारिक समर्पण, कृतज्ञता पनपती है। यदि आप बच्चों को स्कूल छोड़ने या लाने जाते हैं तो इस समय रास्ते के दृश्य, पेड़ पौधे, जानवरों या समाज के विविध रंगों के बारे में उनसे बात करें। यह संवाद उनकी जिज्ञासा, सामान्य ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता को निखारने में मदद करता है। रोजाना कुछ समय निकालकर बच्चों को कहानी या कविताएं सुनाएं। इससे बच्चों में भाषा कल्पना और नैतिक समझ का विकास होता है। आवाज ऊंची करना या बार बार डांटना बच्चे पर उल्टा असर डाल सकता है। प्रार्थना या ईश्वर स्मरण को उसकी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह उसे मानसिक स्थिरता देगा। सार्वजनिक रूप से कभी भी उसका मजाक न बनाएं। ट्यूबलाइट, मोटू या भोंदू जैसे आरोप तुल नाम धरने से बचें। अच्छे संस्कार देने का अर्थ केवल अच्छी अच्छी बातें बताना नहीं है। बातों के साथ ही जीवन की हर छोटी बड़ी परिस्थिति में बच्चों के साथ रहकर उसे समझाकर और उदाहरण प्रस्तुत कर पथ दिखाया। अभिभावक ही बच्चे के पहले और सबसे प्रभावशाली शिक्षक होते हैं। प्यार, धैर्य और निरंतरता के साथ दी गई आपकी शिक्षा उसके बचपन को सुंदर तो बनाएगी ही, उसके भविष्य की नींव भी मजबूत करेगी। आज की शिक्षा व्यवस्था में अक्सर पढ़ाई का मतलब केवल पाठ्यक्रम तक सीमित रह जाता है। शिक्षा जीवन जीने की कला है। आज का बच्चा तकनीक से घिरा हुआ है, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, गेमिंग। ऐसे समय में माता पिता की भूमिका और भी संवेदनशील हो जाती है। उन्हें बच्चों को तकनीक के फायदे और नुकसान दोनों सिखाने चाहिए। कई बार माता पिता और बच्चों के बीच संवाद की कमी से संबंधों में दूरी आ जाती है। यदि माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा उनकी बात माने और समझे तो उन्हें एक दोस्त की तरह संवाद करना आना चाहिए। बच्चों से खुलकर बात करने से वे अपने विचार भी साझा करते हैं, जिससे हमें उनकी मानसिक स्थिति को समझने में आसानी होती है। हर माता पिता की शैली होती है। कुछ सख्त होते हैं, कुछ अत्यधिक नरम, लेकिन आदर्श शिक्षक वह होता है जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार बदल सके। बच्चों को स्वतंत्रता देना आवश्यक है, लेकिन उसकी सीमा तय करना भी उतना ही जरूरी है। जब माता पिता सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं और अपने निर्णयों के पीछे तर्क भी देते हैं, तो बच्चा सिर्फ डर से नहीं, समझ से व्यवहार करता है। बहुत से माता पिता आज व्यस्त जीवन शैली के कारण बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते, लेकिन यह समय ही वह माध्यम है जिससे आप उन्हें जीवन की सबसे अहम बातें सिखा सकते हैं। कोई कहानी सुनाते समय आप नैतिकता समझा सकते हैं, साथ में खेलते हुए टीम वर्क, हार जीत का भाव सिखा सकते हैं। ये सभी अनुभव उनके व्यक्तित्व को निखारने में मददगार होते हैं। बच्चे राष्ट्र के कर्णधार होते हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ही हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र की नींव टिकी हुई है। आज के युग में सभी भयावह स्थिति से गुजर रहे हैं। बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। एक सफल अभिभावक वही है जो अपने बच्चे का मित्र भी है, मार्गदर्शक भी, शिक्षक भी। उसे यह समझना जरूरी है कि स्कूल का शिक्षक कुछ घंटों तक शिक्षा दे सकता है, लेकिन माता पिता जीवन भर बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में सहभागी रहते हैं। इसीलिए जरूरी है कि वे अपने बच्चे के शिक्षक बने, उन्हें समझाएं, सुने, प्रेरित करें और सही मार्ग दिखाएं। माता पिता केवल एक

0: दैविक भूमिका नहीं है, यह जीवन भर की एक शिक्षकीय जिम्मेदारी है। यदि हर माता पिता यह समझ ले कि वे अपने बच्चों के पहले और सबसे अस्थायी शिक्षक हैं, तो न केवल उनका बच्चा एक अच्छा नागरिक बन सकेगा बल्कि पूरा समाज सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। इसलिए अभिभावक बनने के साथ साथ एक संवेदनशील, समझदार और सक्रिय शिक्षक भी बनिए। यही आपके बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाएगा। बच्चों के जीवन में माता पिता की भूमिका केवल पालन पोषण तक सीमित नहीं होनी चाहिए। एक जिम्मेदार अभिभावक को शिक्षक की भूमिका भी निभानी चाहिए ताकि बच्चा जीवन की हर चुनौती के लिए तैयार हो सके, ज्ञान से, नैतिकता से और व्यवहार से। धन्यवाद।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता "बच्चों के अभिभावक बनने के साथ साथ उनके शिक्षक भी बनिए", वार्ताकार अनीता झा से। ये भी बात सच है ना बहनों, कि जो बच्चे होते हैं ना, वो मन के बड़े सच्चे होते हैं। और इसी बात पर मुझे याद हो आया दो कलियां फिल्म का वो गीत जो यही बात कहता है। लता मंगेशकर की आवाज़ है। आइए चलते चलते सुनते हैं ये गीत की कुछ पंक्तियाँ।

0: बहनों, वक्त का ये इशारा है कि हमें आपसे लेनी होगी विदा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इसी दुआ और शुभकामनाओं के साथ अपनी दोस्त और बहन जयश्री को दीजिए विदा। पुनः मिलने के वादे के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जोहार।
1: श्रोताओं, 1 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे राष्ट्रीय प्रसारण के तहत हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और उसके बाद प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
3: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
3: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
2: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
3: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
2: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi says that the government is continuously making efforts to preserve priceless heritage sites in India. He informed about an important discovery made in Malhar, Chhattisgarh, under the Gyan Bharatam Abhiyan. Addressing the nation in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani today, Mr. Modi said that three rare copper plates have been found there related to Maharishi Balarjun of the Panduvanshi dynasty of the 6th and 7th centuries.
3: Gyan Bharatam Abhiyan ke tahat Chhattisgarh ke Malhar mein bhi ek mahatvapurna khoj hui hai. Yahan teen durlabh tamr pattikayein mili hain. Visheshajna mante hain ki inscriptions 6th-7th sadi ke hain. Ye tamr pattikayein prachin Brahmi lipi aur Pali bhasha mein likhi gayi hain. Inse us samay ki shasan vyavastha, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
4: द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो मेंशन हिज रीसेंट विजिट टू द नेदरलैंड्स वेयर इन अ स्पेशल सेरेमनी एंशियंट कॉपर प्लेट्स फ्रॉम द चोला पीरियड विल रिटर्न टू इंडिया। मिस्टर मोदी सेड पीपल आर शेयरिंग जॉय एंड एक्सप्रेसिंग प्राइड एंड द तमिल कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड इज ऑल्सो पर्टिकुलरली एंथुजियास्टिक अबाउट दिस। Prime Minister Modi urged the people of the country to take utmost care during the prevailing hot weather and follow the guidelines issued by various government departments in this regard.
3: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
4: इन इस मन की बात प्रोग्राम द प्राइम मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट द रिसेंटली हेल्ड नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन इन रांची झारखंड वेयर नियरली 800 एथलीट्स पार्टिसिपेटेड। ही कंग्रेचुलेटेड गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना एंड कुलदीप कुमार फॉर ब्रेकिंग 4 नेशनल रिकॉर्ड्स इन डिफरेंट इवेंट्स। In his address, Prime Minister Modi also appreciated the efforts of Saji Valasheril of Aluva in Kerala, who runs a swimming club with no fees in which more than 15,000 people have learned to swim. Three persons lost their lives after a commercial building collapsed near Saket Metro Station in South Delhi last evening. Five persons are undergoing treatment at the hospital, while three have been discharged after receiving treatment. Meanwhile, Chief Minister of Delhi Rekha Gupta visited the incident site in South Delhi and reviewed the ongoing relief and rescue operations. In a social media post, the CMO informed that rescue teams have been continuously engaged in operations since last night. Admiral Krishna Swaminathan today assumed charge as the 27th Chief of the Naval Staff. He succeeds Admiral Dinesh K. Tripathi. Addressing the media after taking over command, Admiral Swaminathan said that the Indian Navy remains vigilant in safeguarding the nation's interest and is actively deployed in a regional security environment that continues to be challenging, complex, unpredictable and uncertain. Chief of Defence Staff CDS Lieutenant General N.S. Rajasubramani has said that innovation in thought and action would drive the development of military capabilities. Addressing the media after assuming charge as the country's new CDS, General Subramani emphasized that greater collaboration among the armed forces, industry, academia, startups, and the research ecosystem would be the key enabler of modernization. U.S. President Donald Trump has said the United States isn't close to reaching a nuclear agreement with Iran, but warned that military action remains an option if negotiations fail. In an interview with a private news channel at the White House, Trump said his administration's priority is ensuring that Iran never obtains a nuclear weapon. And in IPL cricket, Gujarat Titans will be up against defending champions Royal Challengers Bengaluru in the final of the 2026 season in Ahmedabad at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में रांची की राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का किया जिक्र। गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर से बातचीत कर दी बधाई। CUET यूजी तकनीकी दिक्कत पर NTA ने जताया खेत। 3,765 अभ्यर्थियों के लिए पुनर्परीक्षा की तैयारी। NTA जल्द करेगा नई तारीख की घोषणा। रांची के जलाशयों और नदियों से अतिक्रमण हटाने का दिया गया निर्देश। हरमू नदी, कांके और धुरवा डैम पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज। कल से महंगी होगी बस यात्रा। रांची हजारीबाग समेत कई रूटों पर 30% तक बढ़ा किराया। यात्रियों के साथ माल ढुलाई पर भी पड़ेगा असर। और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज शाम होगा IPL का फाइनल। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस में होगी खिताबी जंग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में देश भर के करीब 800 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने विभिन्न स्पर्धाओं में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ियों गुरविंदर सिंह और विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 100 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ियों गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर से बातचीत भी की। खिलाड़ियों ने अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा किए।
2: संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले।
3: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूं। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूं। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
2: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
4: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मौजूदा गर्मी के मौसम में विशेष सावधानी बरतने और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आज आकाशवाणी के मासिक कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए और तेज धूप में बाहर निकलते समय सतर्क रहना चाहिए।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET यूजी के दौरान हुई तकनीकी गड़बड़ी को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने छात्रों और अभिभावकों से माफी मांगी है। NTA के अनुसार 30 मई को आयोजित परीक्षा की पहली पाली में कुछ परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण परीक्षा समय पर शुरू नहीं हो सकी। एजेंसी ने बताया है कि इस समस्या से प्रभावित कुल 3,765 अभ्यर्थियों को पुनर्परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। पुनर्परीक्षा की तिथि और प्रभावित उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। रांची जिले में जल सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में प्रमुख जलाशयों और नदियों को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में हरमू नदी के जलग्रहण क्षेत्र, कांके डैम, थुरवा डैम और अन्य प्रमुख जलाशयों के आसपास से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर अतिक्रमण की सूची तैयार करने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से आयोजित झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा आज राज्य भर के 94 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में 45,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। राजधानी रांची में सबसे अधिक 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए आयोजित यह परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू हुई और दोपहर 12 बजे तक चली। कोडरमा जिले में 1 जून से बस यात्रा महंगी हो जाएगी। जिला बस ऑनर्स एसोसिएशन ने डीजल, टायर, मोटर पार्ट्स और टोल टैक्स की बढ़ती लागत को देखते हुए बस किराए में 15-30% तक बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। झुमरी तलैया में आयोजित एसोसिएशन की बैठक में यह फैसला लिया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने बताया कि बढ़ी हुई दरें एक

0: आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
1: जंडेगा थाना क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया था, जिसमें लगभग 8 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है और बियर की भी बरामद की गई है। साथ ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,70,000 रुपए प्रति किलो है। बोकारो जिले के बीएसएल की एलएच कॉलोनी में एक घर में भीषण आग लगने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मिली जानकारी के अनुसार घर में रखा मिट्टी तेल का एक ड्रम आग की चपेट में आ गया, जिसके बाद आग तेजी से फैलकर पूरे घर में फैल गई। भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम के थाईलैंड दौरे के लिए झारखंड के युवा खिलाड़ी आदर्श राज को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने विश्वास जताया कि आदर्श राज के नेतृत्व में भारतीय टीम थाईलैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन करेगी और देश का नाम रोशन करेगी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले यह खिताबी मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में रांची की राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का किया जिक्र, गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर से बातचीत कर दी बधाई। CUET UG तकनीकी दिक्कत पर NTA ने जताया खेद, 3,765 अभ्यर्थियों के लिए पुनर्परीक्षा की तैयारी, NTA जल्द करेगा नई तारीख की घोषणा। रांची के जलाशयों और नदियों से अतिक्रमण हटाने का दिया गया निर्देश, हरमू नदी, कांके और धुरवा डैम पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज। कल से महंगी होगी बस यात्रा, रांची हजारीबाग समेत कई रूटों पर 30% तक बढ़ा किराया, यात्रियों के साथ माल ढुलाई पर भी पड़ेगा असर। और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज शाम होगा आईपीएल का फाइनल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस में होगी खिताबी जंग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आपने सुना प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। 1:20 हुए हैं श्रोताओं, समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। लेकर हाजिर होंगे हम बस कुछ ही पलों में।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
6: ज्ञान विज्ञान
7: इतिहास के पन्नों से,
6: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
7: मौसम का मिजाज,
6: अपने शहर की खबरें,
7: बातों मुलाकातों के साथ
5: सुरीला मनोरंजन
6: और भी बहुत कुछ।
5: आप सुनते हैं कार्यक्रम

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 06572960445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

फिल्म संगीत के इस संगीतमय सफर में आप सभी श्रोताओं का बेहद स्वागत और आपकी रेडियो दोस्त रिंकी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, दिन भर की भाग दौड़ के बाद ये समय है थोड़ा रुकने का, थोड़ा ठहरने का, कुछ पल अपनों के साथ बिताने का। दोस्तों, इन पलों में साथ हो संगीत का तो ये पल बेहद खूबसूरत बीतेंगे। करते हैं कार्यक्रम का आगाज इस गीत के साथ।

विशाल याशिका सिक्का और ऐश्वर्या कुमार की आवाज में अभी आपने सुना एनिमी फिल्म का ये गीत। स्नेहलता चारी और रेव शेरगिल के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था थॉमन एस ने। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे अमित त्रिवेदी की आवाज में। गीतकार हैं जयदीप सहानी, संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी। फिल्म का नाम अंधाधुन।

अगला गीत श्रोताओं आप सुनेंगे जुग जुग जियो फिल्म से। इनमें आवाज है कनिष्क सेठ और कनिका सेठ की। गीतकार हैं आजिम दाइनी और संगीत है कनिष्क कनिका का।

दोस्तों, ज़िंदगी के राह में हमारे कई रिश्ते बनते हैं। कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं, कुछ हमें जन्म से मिलते हैं। इंसानी रिश्तों की एक खास बात है कि एक समय पे आकर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये थोड़े असुरक्षा की भावना से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे में ये जो असुरक्षित भावनाएं होती हैं दोस्तों, इन्हें कहते हैं इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स, जो कि किसी भी रिश्ते में आना आम बात है। ऐसे में कई बार व्यक्ति खुद को कमतर आंकने लगता है या उसे महसूस होने लगता है कि शायद अब उसकी उस रिश्ते में वो अहमियत नहीं है। ऐसे में उस इंसान को छोड़ने, धुतकारने या खुद से दूर करने के बजाय उनके साथ बातचीत बहुत ज़रूरी है। ये मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। लोगों से बातचीत करना आज के डेट में काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि लोग अपने आप को अपने मोबाइल, सोशल मीडिया और इंटरनेट पे इतना व्यस्त रखते हैं कि वे भूल जाते हैं कि कुछ बातों को सामने बैठकर बताना ज़रूरी होता है। एक छोटा सा थैंक यू, एक छोटा सा सॉरी कई बार कई गलतफहमियों को चुटकी में ख़त्म कर सकता है।

विशाल मिश्रा हंसिका पारेख की आवाज में अभी आपने सुना विकी विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म का ये गीत। सोम के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था सचिन जिगर ने। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में गानों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा बस इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

अगला गीत श्रोताओं आप सुनेंगे अरिजीत सिंह शिल्पा राव की आवाज में। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत दिया है प्रीतम ने, फिल्म का नाम है

श्रोताओं, कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति होगी सचेत टंडन की आवाज में। गीत और संगीत मनन भारद्वाज का, फिल्म का नाम यारियां टू। श्रोताओं, लुत्फ उठाइए इस गीत का और दीजिए अपने रेडियो दोस्त रिंकी को कार्यक्रम फिल्म संगीत से विदा।

लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दो बजने को हैं श्रोताओं, अब आप सुनेंगे राष्ट्रीय प्रसारण के तहत हिंदी और अंग्रेजी में दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। बने रहिए हमारे साथ, समाचार प्रसारित किए जाएंगे बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर रक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब। चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शन छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था

0: राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
0: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
0: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
0: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूँगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को

0: सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती है। इनमें चेन्नई का जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
2: नेवी, एयरफोर्स,
3: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
2: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
1: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024

थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक

अभी आपने सुना समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 2:30 हुए हैं श्रोताओं, समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। लेकर हाजिर होंगे हम बस कुछ ही पलों में।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

फिल्म संगीत के आज के संगीतमय सफर में आप सभी श्रोताओं का बेहद स्वागत करते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज इस गीत के साथ।

अनिरुद्ध और श्वेता मोहन की आवाज में अभी आपने सुना डेविड फिल्म का ये गीत। तो राज के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था अनिरुद्ध ने। अगला गीत श्रोताओं आप सुनेंगे काइट्स फिल्म से। आवाज है केके की, गीतकार है नासिर फराज, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

दोस्तों अगली प्रस्तुति होगी मुस्तफा जाहिद की आवाज में। फिल्म का नाम रागिनी MMS 2। संगीतकार हैं प्रणय रिजिया, गीत लिखा है कुमार ने।

अरिजीत सिंह की आवाज में अभी आपने सुना डंकी फिल्म का ये गीत। इरशाद कामिल के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। श्रोताओं, कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति होगी सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कीर्ति सगाथिया की आवाज में। फिल्म का नाम है दावत इश्क। कौसर मुनीर के लिखे गीत को संगीत दिया है साजिद वाजिद ने। लुत्फ उठाइए इस गीत का और दीजिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम से अब मुझे विदा।

लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 2:55 होने को है श्रोताओं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। बने रहिए हमारे साथ, समाचार प्रसारित किए जाएंगे बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक सौंधी होती है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता की भी चर्चा की। इसमें लगभग 800 एथलीटों ने भाग लिया था। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल देशव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। अभियान के शुभारंभ से पहले श्री चौहान ने झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस अभियान में उनकी भागीदारी के लिए बात की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर कल हुए हमले की निंदा की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री सोरेन ने कहा है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिंसा और हमले के लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। दुमका स्थित सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के सभी स्नातकोत्तर विभागों, अंगीभूत और संबद्ध महाविद्यालयों में 1 जून से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। इसके तहत 20 जून तक विश्वविद्यालय और उसके अधीन संचालित सभी स्नातकोत्तर विभागों तथा महाविद्यालयों में नियमित शैक्षणिक और पठन पाठन संबंधी गतिविधियां स्थगित रहेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC अपनी बढ़ती डिजिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रही है। कंपनी रणनीतिक निवेश के जरिए या स्वयं नई इकाई स्थापित कर फिनटेक कारोबार शुरू करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक R. दुरईस्वामी ने यह बात कही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार मौसम में सुधार होने तक केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रामगढ़ जिले के उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत के निर्देश पर बीती रात रामगढ़ उपकारा का औचक निरीक्षण किया गया। हालांकि इस दौरान उपकारा परिसर से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। जामताड़ा जिले के करमाटांड थाना क्षेत्र से पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर DSP अमित रविदास ने बताया कि इन साइबर अपराधियों के पास से 10 मोबाइल और 10 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं।
2: ग्राम पिंडारी से 2 व्यक्तियों को रंगे हाथ साइबर अपराध करते हुए पकड़ा गया। साथ ही साथ ग्राम बरमुंडी में छापेमारी के क्रम में एक और व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई। तीनों व्यक्तियों के पास से कुल 10 मोबाइल और 10 सिम कार्ड भी प्राप्त हुए हैं।
0: हॉकी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए अंडर-18 एशिया कप के पूल A के अपने दूसरे मैच में आज कोरिया को 3-1 से पराजित कर दिया। भारत की तरफ से नौशीन नाज, श्रुति कुमारी और किरण एक्का ने गोल किए। मलेशिया और कोरिया के खिलाफ जीत के बाद भारत अब पूल A तालिका में 6 अंकों के साथ शीर्ष पर है। वह 2 जून को पूल A के अपने अंतिम मैच में सिंगापुर के खिलाफ जीत का सिलसिला बरकरार रखने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुना आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 3 बज रहे हैं श्रोताओं, समय है कार्यक्रम रोजगार समाचार का।

रोजगार समाचार कुछ इस प्रकार हैं। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 के लिए नोटिफिकेशन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 20 मई से हो चुकी है। उम्मीदवार afcat.cdac.in पर आवेदन कर सकते हैं। योग्यता के अनुसार ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए 60% अंकों के साथ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री तथा फ्लाइंग ब्रांच के लिए 50% अंकों के साथ 12वीं पास, 60% अंकों के साथ 3 वर्षीय ग्रेजुएशन की डिग्री या 7% के साथ बीई बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2027 के आधार पर होगी। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल तथा नॉन टेक्निकल ब्रांच न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम आयु 26 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क के अनुसार जो उम्मीदवार एनसीसी स्पेशल इंट्री और गेट परीक्षा के जरिए आवेदन कर रहे हैं उनसे फीस नहीं लिया जाएगा तथा अन्य के लिए ₹550 देने होंगे। आवेदन करने हेतु एएफसीएटी की वेबसाइट afcat.cdac.in पर लॉगिन कर फॉर्म पर मांगी गई सारी जानकारियां भरें, सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर अपलोड करें, फीस जमा कर फॉर्म सबमिट करें और इसका प्रिंट अवश्य लें। चयन प्रक्रिया के अनुसार रिटन एग्जाम, एसएसबी इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के आधार पर चयन किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जून 2026 निर्धारित की गई है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 22 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। उम्मीदवार bpssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के अनुसार मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना जरूरी है। आयु सीमा के अनुसार सामान्य के लिए पुरुष वर्ग के लिए 21 से 37 वर्ष और सामान्य महिला के लिए 21 से 40 वर्ष है। पिछड़ा तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाओं के लिए 21 से 40 तथा अज्जा और अज्जा के लिए 21 से 42 वर्ष निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क सभी के लिए ₹100 हैं। आवेदन करने हेतु बीपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर लॉगिन कर सारे जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें, फॉर्म भरें तथा फीस भरकर अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर इसका प्रिंट अवश्य लें। चयन प्रक्रिया के अनुसार प्रीलिम्स, मेंस और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 निर्धारित की गई है। रोजगार समाचार संपन्न हुआ।

लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 3:05 होने को है श्रोताओं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।

सुगम संगीत के आज के इस संगीतमय सफर में हम आपको सुनवाएंगे आबिदा परवीन की आवाज में सूफी सॉन्ग। कार्यक्रम का आगाज इस गीत के साथ।

0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर। 3:15 होने को है श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत।
1: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत सुनने वाले सभी सुरी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं नरेश कुमार सिन्हा और साथियों के स्वर में पंच परगनिया लोकगीत।
2: ए संतक

एफएम बैंड के 102.4 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। आज के कलाकार हैं नरेश कुमार सिन्हा और साथी। आइए सुनते हैं पंच परगनिया में ये अगली प्रस्तुति।

नरेश कुमार सिन्हा और साथियों के स्वर में गाए इस पंच परगनिया लोकगीत के साथ ही आज का कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत अब यहीं पर

0: उत्पन्न होता है। अनिमेश को दीजिए अनुमति।
1: लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 3:30 होने को है श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत।

उपशास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। राग होगा मिश्र पिल्लू।

0: पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के बांसुरी वादन के साथ ही आज का उपशास्त्रीय संगीत का हमारा ये सफर यहीं तक। दीजिए इजाजत। लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर। 3:45 होने को है श्रोताओं, अब आप सुनेंगे लोकगीत का कार्यक्रम।
1: कार्यक्रम लोकगीत सुनने वाले सभी सुनी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं शारदा सिन्हा और साथियों के स्वर में भोजपुरी लोकगीत।

एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकगीत। आज के कलाकार हैं शारदा सिन्हा और साथी। आइए सुनते हैं भोजपुरी में ये अगली प्रस्तुति।

0: शारदा सिन्हा और साथियों के स्वर में गाए भोजपुरी लोकगीत के साथ ही आज का कार्यक्रम लोकगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। अनिमेश को दीजिए अनुमति।
1: लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर। 4 बजने को हैं श्रोताओं, अब आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: प्रोग्राम रांची मेलोडीज। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल देशव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गाँव तक पहुँचाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर कल हुए हमले की निंदा की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री सोरेन ने कहा है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिंसा और हमले के लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। दुमका स्थित सिद्धो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के सभी स्नातकोत्तर विभागों, अंगीभूत और संबद्ध महाविद्यालयों में 1 जून से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। इसके तहत 20 जून तक विश्वविद्यालयों और इसके अधीन संचालित सभी स्नातकोत्तर विभागों तथा महाविद्यालयों में नियमित शैक्षणिक और पठन पाठन संबंधी गतिविधियां स्थगित रहेंगी। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC अपनी बढ़ती डिजिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रही है। कंपनी रणनीतिक निवेश के जरिए या स्वयं नई इकाई स्थापित कर फिनटेक कारोबार शुरू करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार मौसम में सुधार होने तक केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए अंडर 18 एशिया कप के पूल ए के अपने दूसरे मैच में आज कोरिया को 3-1 से पराजित कर दिया। मलेशिया और कोरिया के खिलाफ जीत के बाद भारत अब पूल ए तालिका में 6 अंकों के साथ शीर्ष पर है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर। 4:02 हो रहे हैं श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सामुदायिक गीत पाठ।
3: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हो ना असमिया भाषा गीत? अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे, ए माती रे मोरो मोते, माटी के सुमिलो, माटी के सुमिलो, माटी के सुमिलो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। ए माटी ते माटी ते जीवन, ए माटी ते ज नहीं बोलना, इसको ज बोलना। ये ए माटी ते जीवन सोबी, जीवन जी कैसे ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना, तो जीवन सोबी आकी आकी, दोबारा आकी आकी आकी मोसीलो। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद। दूर आकाहार, ये जो ना आका आकाश श को बोलते वहां ह की तरह से, तो आका ये ह और ह के बीच में आका खार भी नहीं आकाहार भी नहीं आकाहार आकाहार लिखो। दूर आकाहार, रोहन कियोनु लागे लागे, खागोर टोलीर खागोर खागोर, ख नहीं बोलना, ह, खागोर तोलीर, खागोर मतलब समुद्र के तल में, तो खागोर तोलीर, मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू लागे लागे, इसके आ गया है आहा आहा, मातीर बुकुत, मातीर बुकुत, मोनोर मालोती बूटोलो, मोनोर मालोती बूटोलो, इसके बाद फिर वही आ जाएगा एई माती रे मोरो मोते, फिर दूसरा अंतरा है मोनोर कोरोनी रे, हुरोर हुरोर पापोरी रे, पापोरी रे आजी, इतना हो गया ना, आगे हुकुमार थापो नाहुजुवा, हुकुमार थापो नाहुजुवा, आगे लिखा है ना जी, हुंदौर खुदीनौर, खुदीनौर नहीं खनी ख, खुदीनौर नौतून दृष्टि, ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके, दृष्टि दृष्टि शनि सही बोलना, दृष्टि दृष्टि कौनो ना हुआ, आगे ना, अच्छा ठीक है, गाना सिखाना शुरू करते हैं, स्वर दीजिएगा,

आ गया ना समझ में? अब यहाँ तक का बोलेंगे शुरू से, 1 2 3 4। दो बार

0: नाहूज हुआ यहाँ खूब भर के आवाज जोर से करना।
1: खो कुमार था पो नाहूज हुआ,
0: मौन और दो बार है ये।

ऐसे बोलना एक बार, और दूसरे ना हुआ दूसरे में ऐसे लंबा कर लेना, खून दौड़ते रहो, एक दो तीन चार।

0: तीन बार बोलना है और धीरे धीरे आवाज हल्की करते चले आना। एक बार तो
1: मोरो मोते,
0: दूसरा हल्का बोलना शुरू से लेंगे सारा गाना, है ना। एक दो तीन चार।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 4:30 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

तमाशा फिल्म में भी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाज़ों को। शब्द रचना इरशाद कामिल की थी और संगीत दिया था ए आर रहमान ने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाज़ों को अभी आप सुन रहे थे आंधी फिल्म से लिए इस गाने में। इस गाने के बोल लिखे थे गुलजार ने और इसकी धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने।

आ अब लौट चलें, इस फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की मिलीजुली आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और इसकी धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं,

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत की प्रस्तुति से मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त विभा को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: कार्यक्रम फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: आकाशवाणी का रांची केंद्र है मीडियम वेव 506
0: होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे ठीक शाम 5 बजे समाचार मुख्यांश। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर कल हुए हमले की निंदा की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री सोरेन ने कहा है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिंसा और हमले के लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस हमले को गलत बताया है। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC अपनी बढ़ती डिजिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रहा है। कंपनी रणनीतिक निवेश के जरिए या स्वयं नई इकाई स्थापित कर फिनटेक कारोबार शुरू करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। पलामू जिले से पुलिस ने एक आपराधिक गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि ये अपराधी सड़क निर्माण कर रही एक निजी कंपनी के कैंप पर गोलीबारी करने की योजना बना रहे थे। इनके पास से 2 9mm पिस्टल, 2 कारतूस, 6 मिस फायर गोलियां, 1 खाली मैगजीन और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जामताड़ा जिले के करमाटांड थाना क्षेत्र से पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर DSP अमित रविदास ने बताया कि इन साइबर अपराधियों के पास से 10 मोबाइल और 10 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में 6 जून तक गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने इस दौरान आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। विभाग के अनुसार कल राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों को छोड़कर अधिकतर क्षेत्रों में गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: समाचार मुख्यांश अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5:02 हो चुके हैं। श्रोताओं, चूंकि आज दिन रविवार है, इसलिए आइए सुनते हैं युवाओं को संबोधित अंग्रेजी कार्यक्रम यूथ टाइम्स।

0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: Here we are with the daily updates. India and Norway launched a new green strategic partnership focusing on clean energy and technology. Myanmar president arrived in India on his first foreign visit since taking office. India unveils first ever World Yogasana Championship 2026. The IPL 2026 final between Royal Challengers Bengaluru and Gujarat Titans is scheduled for today in Ahmedabad at the Narendra Modi Stadium. Jharkhand targets 5,000 CM schools of excellence. Jharkhand also launches a month-long anti-tobacco awareness campaign on World No Tobacco Day. The drive focuses on youth awareness and stricter monitoring near schools and colleges.

युवाओं को संबोधित अंग्रेजी कार्यक्रम यूथ टाइम्स अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM बैंड के 102.4।

दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब वक्त है खुद से मिलने का, चाय की चुस्की के साथ इन हसीन लम्हों में खिलने का। नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, उम्मीद है आपका आज का दिन बेहद शानदार रहा होगा। सुरमई शाम की ठंडी हवाओं के बीच स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम कल कारखाने में। साथ हूँ मैं आपकी रेडियो साथी मंजू।

0: श्रोताओं, आज की इस शाम को खास और यादगार बनाने के लिए हमारे पास है जानकारियों का सिलसिला और ऐसे प्यारे प्यारे गाने जो आपके दिल को छुएंगे। तो चलिए शाम के इस सफर का आगाज करते हैं एक बहुत ही खास जानकारी के साथ। जी हाँ, आज 31 मई है, यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी किसी धुएं या गुटखे के पैकेट से कहीं ज्यादा कीमती है। इस साल इस दिवस की थीम भी है आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटिन और तंबाकू की लत का मुकाबला। इस अहम विषय पर आज आइए सुनते हैं शहर के जाने माने डॉक्टर अशोक कुमार से टेलीफोन पर की गई बातचीत। श्रोताओं, आज 31 मई है, यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस। हर साल हम ये दिन मनाते हैं ताकि खुद को और अपने अपनों को तंबाकू के इस जानलेवा जाल से बाहर निकाल सके। तंबाकू की एक छोटी सी पुड़िया या सिगरेट का धुआं सिर्फ फेफड़ों को नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियों को राख कर देता है, लेकिन इस लत से जीतना मुमकिन है। और इसी विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे हैं आज शहर के मशहूर डॉक्टर अशोक कुमार। डॉक्टर साहब, हमारे इस खास कार्यक्रम कल कारखाने में आपका तहे दिल से स्वागत है, नमस्कार।
1: जी नमस्कार श्रोतागण, मेरे तरफ से आप सबको भी नमस्कार। तंबाकू दिवस के ऊपर में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे इस आदत से हटना है।
0: जी बिल्कुल, ये जानकारियाँ हमारे श्रोताओं के बहुत काम भी आएंगी।
1: जी
0: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये बताइए हमें कि जब कोई इंसान तंबाकू या सिगरेट लेता है तो शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो इसका इस कदर आदी हो जाता है कि चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाता।
1: एक्चुअली तंबाकू के अंदर में ना निकोटीन होता है, और निकोटीन जो होता है ये दिमाग के अंदर में बहुत 5 से 7 सेकंड में ये अंदर में असर आना पड़ता है, और ये बायोलॉजिकल या केमिकल रिएक्शन होता है जो डोपामिन को बॉडी के अंदर में, दिमाग के अंदर में डोपामिन को एक्टिवेट करता है। और वो डोपामिन क्या करता है कि फिर इसको बॉडी को ना एडिक्शन कॉज कर देता है, और उसके बाद एडिक्शन के साथ साथ में बॉडी में न्यूरोलॉजिकल चेंजेज होने लगता है, डिपेंडेंसी उसके ऊपर में बढ़ जाता है, क्राउलिंग हो जाता है, लगता है कि उसके बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे। मतलब कि साइकोलॉजिकल के साथ साथ बायोलॉजिकल चेंजेस जो होता है बॉडी के अंदर में, और वो न्यूरोलॉजिकल चेंज को आगे बढ़ा देता है, और नतीजा है कि हम लोग उसके ऊपर अपने आप को ये डिपेंड कर लेते हैं कि भाई हम बिना तंबाकू का, बिना एडिक्शन का, बिना सिगरेट का, बिना बीड़ी का या बिना खैनी का हम लोग नहीं रह पाएंगे।
0: जी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ दिन में 1 या 2 बार ही गुटखा खाते हैं या सिगरेट पीते हैं, इससे क्या ही नुकसान होगा, ऐसा सोचते हैं लोग। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को?
1: जी मैडम, देखिए गुटखा और सिगरेट दोनों ही बुरा होता है, लेकिन जहाँ तक अगर परिपेक्ष में लिया जाए तो गुटखा से ज्यादा बीमारी होता है सिगरेट के तुलना में। बुरा दोनों ही है, हम ये कभी नहीं कह सकते कि गुटखा बुरा ज्यादा है या है, लेकिन गुटखा खतरनाक ज्यादा है और सिगरेट भी बुरा है, खैनी भी बुरा है। गुटखा के कारण दिक्कत क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए गुटखा खाते हैं तो आपके साथ साथ में ब्रेन के साथ साथ में कैंसर ये सब होने का, मल्टीपल ऑर्गन में कैंसर हो सकता है, जबकि इसके सिगरेट या बीड़ी के द्वारा गुटखा के तुलना में नुकसान होता है पर थोड़ा सा कम होता है, लेकिन दोनों ही हानिकारक हैं।
0: जी जी, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि हम कम मात्रा में ले रहे हैं तो हमें नुकसान नहीं होगा इसका।
1: जी, एक गलत धारणा है मैडम।
0: जी बिल्कुल, लोगों को इस सोच से बाहर निकलना चाहिए।
1: जी,
0: क्योंकि अगर हम कम मात्रा ले या फिर ज्यादा ले, दोनों ही जहर के समान होता है।
1: बिल्कुल।
0: एक और जरूरी बात डॉक्टर साहब, जो लोग खुद धूम्रपान नहीं करते लेकिन उनके घर में कोई और स्मोक करता है तो उस धुएं का बच्चों और परिवार के बाकी सदस्यों पर क्या असर पड़ता है?
1: नियम के हिसाब से अगर बोला जाए तो स्मोकिंग 2 तरह का होता है, पैसिव और एक्टिव। एक्टिव स्मोकिंग वो होता है कि जो व्यक्ति खुद नशा करता है यानी सिगरेट पीता है या धुआं पीता है, और जो पैसिव होते हैं जो उनके धुआं निकलता है। तो धुआं जो पैसिव स्मोकर होते हैं यानी कि अगर जो सिगरेट पीने वाले हैं और उनके सामने जो बैठे हैं उनको ज्यादा खतरा है सिगरेट पीने वाले के तुलना में, यानी पैसिव स्मोकर कम से कम 3 से 4 गुना ज्यादा खतरनाक स्थिति को झेलता है एक्टिव स्मोकर के तुलना में।
0: सर, इसे थोड़ा समझाएंगे ये कैसे होता है, क्योंकि जो स्मोक करता है उसको तो नुकसान होता ही है और जो सामने होता है उसको ज्यादा नुकसान कैसे होता है सर ये?
1: जी, जो स्मोकिंग करते हैं, जो पर्टिकुलरली मान लीजिए कोई एक आदमी स्मोकिंग करता है, उसके सामने सपोज कीजिए कोई आदमी बैठा हुआ है, तो जो पी रहा है तो उसका ब्रेन तो उसके अंदर में धीरे धीरे चेंज होता है, लेकिन जो नॉन स्मोकर होते हैं और उनके सामने स्मोकिंग जाता है, धुआं जाता है, तो अचानक बोलस डोज में जाता है, इकट्ठा ज्यादा मात्रा में जाता है और उनको दिक्कत होता है और बॉडी और ब्रेन उसके लिए तैयार नहीं होता है, तो उनको असर ज्यादा पड़ता है। आमतौर पर एडिक्शन का असर उनके ऊपर ज्यादा पड़ेगा, चूंकि स्मोकिंग अचानक होता है और उनका बॉडी उसके लिए तैयार नहीं होते।

0: अच्छा, और जो लोग इस लत को हमेशा के लिए गुडबाय कहना चाहेंगे, तो मेडिकल साइंस में उसके लिए क्या मदद हो सकती है? इसे शुरू हम कैसे कर सकते हैं? इसे जो लोग छोड़ना चाहते हैं, इसे कैसे छोड़ सकते हैं?
1: जी, मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर बोला जाए तो सबसे पहले मेडिकल साइंस के तुलना में सोशल व्यवहार होना चाहिए, यानी समाज का हिस्सा है, घर का, परिवार का। घर और परिवार अगर इसको एडिक्शन को रोके तो रोकना बिल्कुल आसान है। इसके लिए सबसे बड़ी से जिस समय आपको आदत लगता है, मान लीजिए अगर कोई आदमी स्मोकिंग करता है अर्ली मॉर्निंग में, या कोई बहुत लोग कहेंगे कि हमको बाथरूम जाना है अपने उसके पहले, तो उस समय कुछ दूसरे आदत में जैसे चाय ले सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ अगर मान लीजिए सौंफ है या फिर इलायची है कुछ रख करके, या फिर जिस नशा का जो सामान मिलता है, स्मोकिंग का जो सामान मिलता है, बीड़ी मिलता है, सिगरेट मिलता है, उसके पास में नहीं रहे। जी,
0: और मेडिकल साइंस इसमें किस तरह से मदद कर सकता है?
1: मेडिकल साइंस देखिए मैडम, जो एडिक्शन ज्यादा हो जाता है उनके लिए है, लेकिन नॉर्मल एडिक्शन तो विल पावर से ही ठीक होता है, उसमें मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा रोल नहीं करता है। मेडिकल साइंस जो एडिक्टेड रहते हैं उनको विड्रॉवल करते हैं, कभी नींद की गोलियां दी जाती है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए प्रोसेस और फिजियोथेरेपी हैबिट के लिए किया जाता है, साथ साथ में कभी कभी डी एडिक्शन सेंटर भी सहायता देता है।
0: जी, जिनको लत ज्यादा होती है ना।
1: जी जी
0: जी तो इस तरह से हम नशे से छुटकारा पा सकते हैं।
1: जी
0: और डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो तंबाकू मुक्त जिंदगी जीना चाहते हैं? और इस बार तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम भी है कि आकर्षण से छुटकारा, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा श्रोता बंधु, आप लोग ये सोच लीजिए कि जो नशा होता है ना, नशा कुछ नहीं होता है, दिमाग का एक बीमारी है, भ्रम है, जो आपको थोड़ा देर के लिए प्लेजर जरूर देता है, प्लेजर देता नहीं है। आप इसको एक अंधविश्वास से हटिए कि कभी ये फायदेमंद नहीं होता है स्मोकिंग, और आप लड़िए, इसके लिए लड़ा जा सकता है, विल पावर है, आप कर सकते हैं सब कुछ। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन भी यही बात बोलती है कि आप अगर अपने अंदर में विल पावर ले आते हैं तो कोई किसी नाम का कोई भी नशा होता ही नहीं, और तंबाकू या किसी तरह का कोई भी एडिक्शन को आप छोड़ सकते हैं। जी
0: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब। ये वाकई में हमें अंधविश्वास में नहीं जीना चाहिए, हमें जो मुश्किलें आती है नशे की आदत को छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए, और हम लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
1: बिल्कुल जीतेंगे जी,
0: नशे से हमारा देश जो है वो छुटकारा पा जाएगा। और सबसे अच्छी बात होगी कि हमारा जो परिवार है जिनमें नशे की आदत होती है उनका परिवार बिखर जाता है, तो वो नशे की आदत छोड़ेंगे तो बहुत कुछ उनको फायदा होगा, उनका परिवार आगे ही बढ़ेगा, मुश्किलों से बचेगा। डॉक्टर साहब, बहुत ही आसान शब्दों में हमारे श्रोताओं को इतनी अहम जानकारी दी आपने। उम्मीद करती हूँ कि आपकी बातें सुनकर आज कई लोग जो होंगे इस लत को छोड़ने का एक मजबूत फैसला लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारियाँ हमारे साथ साझा करने के लिए।
1: उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों पर अमल करेंगे।
0: जी बिल्कुल।
2: विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर डॉक्टर अशोक कुमार से टेलीफोन पर की गई बातचीत अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, इस बातचीत में अभी हमने सुना है कि निकोटीन के इस जाल से बाहर निकलना कितना जरूरी है, लेकिन जब कोई पहली बार तंबाकू या सिगरेट हाथ में लेता है तो लगता है कि बस एक बार ट्राई कर रहे हैं, लत थोड़ी ना लगेगी। लेकिन सच तो ये है कि इसमें मौजूद निकोटीन इतनी खामोशी से हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेता है कि कब ये शौक एक जानलेवा लत बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। तंबाकू सिर्फ कैंसर नहीं देता, ये आपके दिल, फेफड़ों और आपकी जेब तीनों को अंदर से खोखला कर देता है। और नुकसान सिर्फ तंबाकू खाने या सिगरेट पीने वालों को नहीं होता, जो धुआं आपके फेफड़ों से बाहर निकलता है वो आपके बच्चों, आपके परिवार के फेफड़ों में भी जहर घोलता है। लेकिन आज का दिन सिर्फ डरने का नहीं है, आज का दिन फैसला लेने का है। एक जरूरी बात यहाँ कहना चाहेंगे आपसे कि निकोटीन की लत को छोड़ना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आप तंबाकू छोड़ते हैं आपका शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है, कुछ ही सप्ताह में आपकी सांसें बेहतर होने लगती है और आपका दिल खुलकर धड़कने लगता है। अगर नशे की लत जिन्हें है और इसे छोड़ने की इच्छा है तो शुरुआत आज से ही कीजिए। जब भी तलब लगे पानी पिए, सौंफ खाएं, इलायची चबाएं या किसी दोस्त से बात करें। सरकार की नेशनल टोबैको क्विट लाइन 1800112356 पर कॉल करें, जहां एक्सपर्ट्स आपकी निःशुल्क सहायता करेंगे। तो श्रोताओं, निकोटीन के इस जाल को तोड़िए, सिगरेट के धुएं में अपनी खुशियां मत उड़ाइए और गुटखे के स्वाद में अपनी जिंदगी मत थूकिए। तंबाकू को कहिए ना और अपनी जिंदगी को कहिए हाँ, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसमें हर पल खुलकर सांस लेने का हक आपका है। तो फिर देर किस बात की, आज ही तंबाकू की इस कड़वाहट को कहिए हमेशा के लिए बाय बाय।

मुस्कुराकर अपनी इस प्यारी सी लाइफ को कहिए लव यू जिंदगी। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गाना 102.4 FM पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम कल कारगाने।

लव यू जिंदगी। बिल्कुल श्रोताओं, अपनी जिंदगी से हमें प्यार तो करना ही चाहिए, है ना? और हमेशा ये कहिए बिल्कुल कि लव यू जिंदगी। बता दें आप सबको कि डियर जिंदगी फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गाना अभी आप सुन रहे थे। जसलीन रॉयल और अमित त्रिवेदी की आवाजें थी। कौशल मुनीर ने शब्द रचना की थी और संगीत दिया था अमित त्रिवेदी ने।

0: आकाशवाणी एट 90
1: एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर श्रमिक श्रोता सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल कारखाने। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब जानकारियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ खास जानकारियों के साथ। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हमारे देश की तरक्की की रीढ़ है। चाहे खेत में पसीना बहाते किसान हो, मकान बनाते मजदूर हो, सड़कों पर रेहड़ी पटरी लगाने वाले हमारे साथी हो या घरों में काम करने वाली महिलाएं, आपकी कड़ी मेहनत से ही ये देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन अक्सर भविष्य की चिंता और सामाजिक सुरक्षा की कमी आपको परेशान करती है, इसलिए भारत सरकार आपके भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए कई बेहतरीन योजनाएं चला रही है। आज हम बात करेंगे उन्हीं योजनाओं की जो सीधे तौर पर आपके लिए बनी हैं।

श्रोताओं, सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज है आपकी पहचान। अगर आपने अभी तक ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आज ही कराइए। ये पूरी तरह निःशुल्क है। जी हाँ, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता। रजिस्ट्रेशन होते ही आपको मिलता है एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कार्ड। अब इस यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कार्ड के क्या फायदे हैं ये आपको बताते हैं। इसका फायदा ये है कि सरकार के पास आपका डेटा होता है, जिससे किसी भी आपदा या जरूरत के समय आर्थिक मदद सीधे आपके खाते में पहुंचाई जा सके। कितनी अच्छी बात है ना श्रोताओं ये। वहीं आपके बुढ़ापे का सहारा बनती है पीएम श्रम योगी मानधन योजना, जो एक पेंशन योजना है। 18 से 40 साल के श्रमिक इसमें शामिल हो सकते हैं। आपको हर महीने अपनी उम्र के हिसाब से एक छोटी सी राशि मात्र 55 रुपए से 200 रुपए तक जमा करनी होती है। जी हाँ, ये राशि सिर्फ 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की होती है, और जितनी राशि आप जमा करेंगे उतनी ही सरकार भी मिलाएगी। और जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी, यानी आपकी रिटायरमेंट की उम्र हो जाएगी, तब आपको हर महीने 3000 रुपए की एक फिक्स्ड पेंशन मिलेगी। यानी बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। तो पीएम श्रम योगी मानधन योजना तो कितनी अच्छी।

श्रोताओं, बीमारी कभी बताकर नहीं आती और एक गरीब परिवार के लिए इलाज का खर्च बहुत भारी पड़ता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र श्रमिक परिवारों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देश के चुनिंदा सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मिलता है। आपका स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे सुरक्षित रखें।

0: श्रोताओं, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन योजनाओं का फायदा आप कैसे ले सकते हैं, तो ये भी बहुत आसान है। अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी प्रज्ञा केंद्र या जन सेवा केंद्र पर जाएं, अपने साथ अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर जरूर ले जाएं। आप खुद भी अपने मोबाइल से आधिकारिक सरकारी वेबसाइट्स पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही आगे बढ़िए, इन योजनाओं से जुड़िए और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित बनाइए, क्योंकि आप और आपका परिवार सुरक्षित होगा तो ये देश भी सुरक्षित होगा और आगे बढ़ेगा।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
1: हेलो डॉक्टर।
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700-001-4242।
3: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
0: FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर श्रमिक श्रोता सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल कारखाने।

कार्यक्रम में जानकारियों से भरी बहुत सारी बातें हुई, तो अब मनोरंजन भी तो होना ही चाहिए ना। तो आप सबके मनोरंजन के लिए पेश है ये बहुत ही प्यारा सा गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म जीनियस से। तो आइए सुनते हैं FM के 102.4 MHz पर ये बहुत ही प्यारा सा गाना।

कुमार की शब्द रचना अरिजीत सिंह की दिलकश आवाज में अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी जीनियस और धुन बनाई थी हिमेश रेशमिया ने। और श्रोताओं, इसी प्यारे से गाने के साथ अब वक्त चला है कार्यक्रम कल कारखाने के आज के अंक को यहीं संपन्न करने का। लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में, इसी समय। तब तक के लिए मंजू को दीजिए अनुमति।

कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 6 बजने ही वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: समाचारों का प्रसारण अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 6:10 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत।
1: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत सुनने वाले सभी सुधीर श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं धनुराम मुर्मू और साथियों के स्वर में संताली लोकगीत।

0: धनुराम मुर्मू और साथियों के स्वर में गाए संथाली लोकगीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। अनिमेश को दीजिए अनुमति।
1: झारखंड के लोकगीत ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:20 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार।

0: आतपात् आत्मानं संरक्षितुं पारंपरिकपेय पदार्थानां सेवनाय जनान् अध्यर्थयत्। CBSE इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा ऑन मार्क पोर्टल इति वेब फलकस्य सेवा प्रदातुः सूक्ष्मं निरीक्षणं विधीयते। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलेन निर्णायक चक्रे विजयोधिगतः। अपि च IPL क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलम् अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सद्य सम्पन्नायाः नीदरलैंड देशस्य यात्रायाः उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् तत्रत्यया शासन संस्थया चोलकालीनाः ताम्रपट्टिकाः भारतदेशाय प्रत्यर्पिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे श्रीमोदी अवोचत् यत् एतेन विश्वव्यापिनः तमिल समुदायस्य मध्ये विशेषः उत्साहः वर्तते। सः अवदत् यत् एताः पट्टिकाः चोलसाम्राज्यस्य सामुद्रिक शक्तिं दक्षिण पूर्व एशिया देशैः सह तेषां सम्बन्धान् च प्रदर्शयन्ति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत प्रशासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सः प्रोक्तवान् यत् ज्ञान भारतम् अभियानेन छत्तीसगढ़ राज्यस्य मल्हार क्षेत्रे षष्ठ सप्तमयोः शताब्द्योः पाण्डुवंशस्य महर्षेः बलार्जुनस्य सम्बद्धाः दुर्लभाः तिस्रः ताम्रपट्टिका अपि प्राप्ताः।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना देशवासिनः वर्तमाने भीषण ग्रीष्मऋतौ अत्यधिकं सावधानतां धारयितुं प्रशासनेन प्रदत्तानां निर्देशानां पालनं च कर्तुं प्रार्थिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे सः जनान् पर्याप्तमात्रायां जलपानं कर्तुं तथा सूर्यतापाद् रक्षणोपायान् स्वीकृत्यैव गृहात् बहिर्गन्तुं परामर्शम् अददत्।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री अवदत् यत् ग्रीष्म तापात् रक्षणं प्राप्तुं आमपन्नम्, तक्रम, सत्तुपेयम्, बेलपन्नम्, पानकम्, नीरमोर, सोलकड़ी चेत्यादीनां सेवनं हितकरम् अस्ति। सः उक्तवान् यत् एते पेय पदार्थाः एक भारत श्रेष्ठ भारत इति भावनां प्रदर्शयन्ति तथा तेषु पूर्वजानां अनुभवः निहितः अस्ति।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री रांची नगरे आयोजिताः राष्ट्रीय वरिष्ठ क्रीडा संघ प्रतियोगितायाः अपि चर्चाम् अकरोत्। अस्यां प्रतियोगितायां प्रायः अष्टशताधिक क्रीडकाः भागं गृहीतवन्तः। श्रीमोदी गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके, तेजस्विन शंकरः, देवमीणा, कुलदीप कुमारः चेत्येतेभ्यः अभिनन्दनम् अयच्छत्। असौ शत मीटर मितायां धावन प्रतियोगितायां विजेतृभ्यां गुरिन्दर वीर सिंहः तथा अनिमेश कुजूर चेत्येताभ्यां सह अपि संवादम् अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् खगोलशास्त्रं देशस्य प्रत्येकं जनेषु जिज्ञासां जनयति। तेनोक्तं यत् खगोलशास्त्रं देशे शीघ्रं लोकप्रियं भवति। श्रीमोदी युवानः खगोलशास्त्र समूहे सम्मिलितुं तथा अवकाश कालावधौ तारामण्डलं द्रष्टुं प्रेरितवान्। प्रधानमंत्री उत्तरप्रदेशस्य एकस्मिन् कुल्यां गंगा डॉल्फिन प्राणिनः रक्षण सम्बद्धस्य लघु चलच्चित्रस्य अपि उल्लेखं कृतवान्। तेनोक्तं यत् नमामि गंगे अभियानस्य अन्तर्गतं निर्मिता भारतस्य प्रथमा गंगा डॉल्फिन उद्धार एम्बुलेंस अस्मिन् कार्ये महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। श्रीमोदी अवदत् यत् गंगा डॉल्फिन संरक्षणेन नद्याः जैव विविधतायाः तथा अमूल्यायाः प्राकृतिक धरोहरायाः संरक्षणमपि भवति।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह

0: तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: नूतनः सीडीएस इति प्रमुखः रक्षाध्यक्षः लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी अद्य उक्तवान् चिंतने कर्मणि च नवोन्मेषः सैन्य सामर्थ्यानां विकासं त्वरितं करिष्यति। देशस्य नूतनस्य प्रमुख रक्षाध्यक्षस्य पदं स्वीकृत्य वार्ताहरैः सह संवादे जनरल सुब्रमणी अवदत् यत् सशस्त्रबलानि राष्ट्रहित संरक्षणे निरन्तरं व्यावसायिकं कार्यसञ्चालन सम्बद्धं निर्णायकं च प्रदर्शनं विहितवन्तः। ते भारतस्य सार्वभौमत्वस्य प्रादेशिक अखण्डतायाश्च रक्षणाय दृढसंकल्पाः सन्ति। अद्य प्रातः नवदिल्लीस्थे साउथ ब्लॉक प्रांगणे प्रमुखाय रक्षाध्यक्षाय गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानः प्रदत्तः। तेन राष्ट्रिय युद्ध स्मारके पुष्पाञ्जलिरपि समर्पिता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा उक्तं यत् स्वस्य सेवा प्रदातुः ऑन मार्क पोर्टल इत्यस्यान्तर्गताः ये दोषाः अधुना सार्वजनिकरूपेण आगताः तेषां विषये सा सावधानतया निरीक्षणं करोति। सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते सन्देशे सीबीएसई उक्तवान् यत् विविध सर्वकारीय संस्थानां तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानां साइबर सुरक्षा विशेषज्ञानां दलं गतदिनेषु एतासां प्रणालीनां सुदृढीकरणाय तथा तन्त्रांशं सुरक्षितुं नियुक्तम् अस्ति। सीबीएसई अपि सूचितवान् यत् अभिज्ञाताः दोषाः नियन्त्रणाधीनाः कृताः, सहैव अन्यासां संभावितानां त्रुटीनां निवारणार्थं गभीरा समीक्षा क्रियते। एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन अद्य नौसेनायाः 27वें प्रमुखत्वेन पदभारं स्वीकृतवान्। असौ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इत्यस्य उत्तराधिकारी अभवत्। एडमिरल स्वामीनाथेन उक्तं यत् नौसेना समाह्वान पूर्णे जटिले अनिश्चिते च वातावरणे सक्रियरूपेण कार्यं कर्तुं प्रवृत्ता अस्ति। सावदत् यत् नौसेनायाः आधुनिकीकरणं क्रियते, येन उच्चतमस्तरस्य युद्धक्षमता सुसज्जिता भविष्यति। अस्मिन् अवसरे निवर्तमानः नौसेनाप्रमुखः एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी देशस्य नौसेनायाः नेतृत्वं गौरवपूर्णम् अभवत् इति अवदत्। स प्रोक्तवान् यत् पश्चिम एशियायाः वर्तमानस्थितेः मध्ये भारतीय नौसेनायाः प्रतिबद्धता, व्यावसायिकता च अक्षुण्णा एव स्तः। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः अवोचत् यत् अमेरिका ईरानेन सह परमाणु सन्धेः सन्निकटः वर्तते, तथापि तेन सञ्चेतितं यत् यदि संवादो विफलः भवेत् चेत् सैन्य कार्याचरणस्य विकल्पः अपि तत्परः स्यात्। श्रीमता ट्रम्पेण उक्तं यत् ईरानाय कदापि परमाण्वस्त्र निर्माणानुमतिः नैव प्रदास्यते। तेनाश्वासितं यत् सन्धिः जाते सति होर्मुज जलडमरु मध्ये इत्येतत् शीघ्रम् उद्घाटयिष्यते। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति श्रृंखलायाः निर्णायक स्पर्धा भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलेन विजिता। निर्णायक स्पर्धायां भारतीय दलेन इंडोनेशियायाः मोहम्मद शोहिबुल फिक्री फजर अल्फियान इत्यनयोः युगलं 18-21, 21-17, 17-16 इति अंकांतरालेन पराजितम्। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां निर्णायक स्पर्धा अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे भविष्यति। क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति। स्पर्धायाः आरंभः सायं 7:30 भविष्यति इति वार्ताः।
2: संस्कृत में समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से। एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:30 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ज्ञान, सूचना, मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले मेरे प्यारे किसान भाई बहनों, साथ ही कार्यक्रम सुन रहे सभी सुरी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आज के ज्ञानवर्धक अंक के साथ हूँ मैं आपका रेडियो मित्र अनिमेश कुमार बक्सी।
1: बड़ी बहू, ये तुम्हारे ना
2: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
3: और ये
4: मेरी गुड़िया के नाम।
5: दादी, हाँ, आपके नाम?
6: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो।
5: क्या
6: RBI कहता है?
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कृषक मित्रों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों और बचाव के उपाय विषय पर सुनिएगा भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार होंगे जिला तंबाकू नियंत्रण प्रोग्राम के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर मृत्युंजय धाउडिया। लोक गीतों के साथ सुनिएगा जरूरी सूचनाएं और जानकारियां। लेकिन इन सबसे पहले बातें कर लेते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर धूम्रपान को कहे ना विषय पर। किसान भाई बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष 31 मई को दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्यतः उद्देश्य यही रहता है कि तंबाकू के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभावों, कैंसर के जोखिम और पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना। मित्रों, हम सभी को आज के दिन यह प्रण लेना चाहिए कि वैसे सभी पदार्थ जिसके सेवन से शरीर को गंभीर बीमारियों का खतरा रहता हो, इन सभी व्यसनी पदार्थों और मादक द्रव्यों से हम सर्वदा दूर रहेंगे। यदि किसी भी प्रकार की लत लगी हो तो उसे संकल्प के साथ छोड़ने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आपको बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वर्ष 1987 में संकल्प के साथ तंबाकू निषेध दिवस मनाने की वैश्विक शुरुआत की थी। इसका मूल मकसद था लोगों को धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों की लत छोड़ने के लिए प्रेरित करना और विश्व के हरेक देश के सरकारों को कठोर तंबाकू नियंत्रण नीतियां बनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना। मित्रों, तंबाकू के दुष्प्रभावों को देखते हुए हर वर्ष यह दिवस कुछ न कुछ विषयों के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है आकर्षण का पर्दाफाश करना, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना। आप सोच रहे होंगे कि आकर्षण का पर्दाफाश करना, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर आपको बता दूं कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, वो युवाओं को इस लत के प्रति आकर्षित करने के लिए भ्रामक विज्ञापन और भ्रामक विचार परोसती है। इन भ्रामक विज्ञापनों और युवाओं को इसके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए ही यह विषय रखी गई है। आकर्षण का पर्दाफाश करना, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना। मित्रों, एक बात यहाँ जानने की है कि धूम्रपान और चबाने वाले तंबाकू के कारण दुनिया भर में WHO की आंकड़ों के मुताबिक प्रतिवर्ष 8 मिलियन यानी 80 लाख लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एकमात्र इसी पदार्थ के कारण और इसके लगातार सेवन के चलते शरीर का हर अंग कुछ ही महीनों में बीमार होकर काम करना बंद कर देता है। तंबाकू सेवन हर तरह की बीमारियों का खुला निमंत्रण होता है और कुछ ही महीनों के सेवन से आप गंभीर बीमारियों से घिर जाते हैं। किसान भाई बहनों, जिंदगी बहुत छोटी है, अनमोल है, इसलिए इसे आनंद के साथ, अपनों के प्यार और सहयोग के साथ मिलकर जीना चाहिए। क्षणिक सुख और क्षणिक स्वाद थोड़े समय के लिए ही अच्छे लगते हैं, पर इनका खतरा बड़ा होता है। तो आइए आप और हम मिलकर धूम्रपान और तंबाकू के सेवन को कहें ना। कृषक मित्रों, इस महत्वपूर्ण चर्चा के बाद आपको सुनवाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों और बचाव के उपाय पर भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार हैं जिला तंबाकू नियंत्रण प्रोग्राम के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर मृत्युंजय धाउडिया और इनसे बातचीत की है आपके रेडियो मित्र अनिमेश कुमार बक्सी ने। आइए

0: सुनते हैं आज के विशेष दिवस पर यह महत्वपूर्ण भेंट वार्ता। ग्रामीण किसान भाई बहनों, आज के कार्यक्रम कृषि जगत में हम बातें करने वाले हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में। जी हां, आपने सही सुना, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और प्रतिवर्ष 31 मई को हम लोग यह दिवस मनाते हैं। और यह दिवस मनाने का मकसद जो है वह यह रहता है कि हम तंबाकू का या फिर अन्य जो मादक पदार्थ हैं उनका हमारे शरीर पर सेवन करने से क्या प्रभाव पड़ता है, उसके प्रभाव की विवेचना करना और लोगों को जागरूक करना। तो इसी विषय पर आज हम बातें करने वाले हैं। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मृत्युंजय धावड़िया, जो कि नोडल ऑफिसर हैं नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के। मृत्युंजय जी, आपका बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: धन्यवाद।
0: मृत्युंजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस दिवस को लेकर के?
1: इस वर्ल्ड तंबाकू जो है 21 मई को हर एक वर्ष जो है इसको मनाया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि सभी लोगों को तंबाकू का जो हानि है तंबाकू सेवन करने से के बारे में इसको जागरूक करना है। तंबाकू नहीं लेने के लिए हम लोग ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तंबाकू नहीं लेने के लिए बोल रहे हैं कि क्योंकि इसमें बहुत सारे बीमारियां हमारे शरीर में इसमें शुरू हो जाता है, इसमें
0: अच्छा
1: इसलिए ये मनाया जा रहा है। ठीक है।
0: जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति अगर तंबाकू का सेवन पहले दिन से शुरुआत करता है तो उसके शरीर में पहले दिन से क्या क्या लक्षण आने लगते हैं?
1: नहीं, पहला दिन में अगर तंबाकू सेवन कर लेंगे तो उसका लक्षण आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तंबाकू का जब लात लग जाता है, लात लगने के बाद रेगुलर जो हैबिट होता है उसमें उसका जो सारी जो लक्षण है या जो दुष्प्रभाव है सब आने लगता है। एक तो सिगरेट कभी पी लिए हैं तो उसमें कोई हानि ऐसा कुछ नहीं है उससे।
0: अच्छा। तो बेसिकली शरीर पर जो प्रभाव है वो क्या उत्पन्न होने लगता है? जैसे मान लीजिए कि कोई अगर लगातार 30 दिन तक सेवन कर रहा है तो शुरुआत मतलब क्या होती है उसमें? कैसे लोग पकड़ेंगे कि इसको इसका लत लग गया है और ये इसका आदि हो चुका है, तो उसको हम कैसे उसको बचाएंगे?
1: हाँ, तो जैसे कि कोई लोग इसमें लत लग गया है, इसमें तो लत लग गया के मतलब कि उसके बिना वो जी नहीं पा रहे हैं। उसको नींद नहीं आ रहा है। जैसे वो नहीं लेंगे, सपोज कोई व्यक्ति तंबाकू ले रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं और उसको लत लग गया है, अगर उसको बोलेंगे कि तुम छोड़ दो तो अगर वो छोड़ देंगे तो उसको बेचैनी शुरू हो जाएगा, उसको नींद नहीं आने लगेगा। जब वो लेटरिन में जाएंगे पैखना के लिए तो पैखना नहीं होगा। ये टोटली ये सब जो है ये साइकोलॉजिकल है, ये सब।
0: अच्छा।
1: ठीक है, ये साइकोलॉजिकल है। अब लात लगने के बाद वो अगर तंबाकू ले रहे हैं सारी चीज का, तो हमारे शरीर में सिर से लेके पैर तक जो है सभी सिस्टम में कुछ ना कुछ उसमें प्रभाव उसमें पड़ता है उसमें।
0: अच्छा,
1: ठीक है। तो बहुत ज्यादा अगर ले रहे हैं तो हम लोग शुरू करते हैं अभी सिर से, अभी मान लीजिए सिर में बाल है तो बाल भी उसका जो है वो या तो झड़ने लगेगा नहीं तो उसका कलर में चेंज आएगा बहुत ज्यादा अगर ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ब्रेन जो है, ब्रेन भी धीरे धीरे धीरे धीरे उसका जो स्मरण शक्ति है वो स्मरण शक्ति धीरे धीरे उसमें घटेगा। उसमें फिर आंख में आइए तो आंख में आएंगे तो उसका जो मोतियाबिंद जो है, मोतियाबिंद 40 के बाद किसी किसी को शुरू हो जाता है और दूसरा कारण से भी, ये भी एक कारण है कि मोतियाबिंद शुरू होने का ये भी एक कारण है। ठीक है। उसके बाद आप मान लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र जिसको बोलते हैं फेफड़ा, फेफड़ा में सारी चीज उसका जो है बीमारी है उसका फेफड़ा में उसका, जैसे आपका अस्थमाटिक प्रॉब्लम जो बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, फिर धीरे धीरे वो बाकी जो है फेफड़ा जो खराब होने लगता है उसमें सांस लेने में दिक्कत होगा, टीबी भी हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें तंबाकू लेने से क्या होता है कि ओरल कैंसर
0: और मुंह का कैंसर,
1: मुंह का कैंसर जो है सबसे पहले तो मुंह का कैंसर होगा, फेफड़े का भी हो सकता है और जगह का भी हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है, कुछ भी कैंसर हो सकता है, लेकिन ओरल कैंसर ज्यादा है उसमें।
0: अच्छा।
1: जैसे खैनी ले लिया, तो खैनी जो दबा के रखते हैं मोट में, तो वहाँ एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन को वो धीरे धीरे धीरे धीरे खत्म कर देता है, और उस दिन के बाद वो धीरे धीरे वो कैंसर के रूप में वो आ जाता है वो।
0: अच्छा।
1: तो उसमें अगर उसमें अगर वो कैंसर हो गया है तो कितना बड़ा कठिनाई है हमारे समाज के लिए। एक तो जो व्यक्ति कमा रहे हैं उसका कमाई खत्म हो जाएगा, उसका कोई भी बीमारी हो तो पूरा जो परिवार को देखता है वो बंद हो जाएगा। ये तो उसका परिवार के लिए है, लेकिन हमारे देश में है इसका भी तो नुकसान है। इसमें उसको जो ट्रीटमेंट के लिए जो खर्चा होता है उसमें, अभी तो अभी सरकार अभी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि दे नहीं रहे हैं, पर ये एक इकोनॉमिकली भी ये एक खराब चीज है, ये हानिकारक है। तो फिजिकली इकोनॉमिकली सोशली सब कुछ जो है इसमें इसको डिटोरिएशन होने लगता है इसका। तो फिर उसके बाद हार्ट में मान लीजिए आता है,
0: हाँ,
1: तो हार्ट का प्रॉब्लम शुरू होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, जिसको ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसमें। और सब तुलना में जैसे मान लीजिए किसी को ब्लड प्रेशर है, और वो अगर एक टेबलेट कोई भी एक टेबलेट वो ले रहे हैं रोज, और वो अगर सिगरेट पी रहे हैं या तंबाकू ले रहे हैं, तो उसका जो डोज है वो डोज उसका बढ़ जाएगा उसमें। क्योंकि करता क्या है कि स्मोकिंग के द्वारा जो ब्लड वेसल्स है, जो रक्तनाली है, उसको संकुचन करता है उसमें।
0: अच्छा,
1: है ना, संकुचन हा, हा, करने के बाद उसका ब्लड प्रेशर उसमें बढ़ जाता है उसमें। अगर कोई व्यक्ति सिगरेट ले रहे हैं, अगर उसको ब्लड प्रेशर अभी लिया जाए और दो टाइम के लिए उसको बोल दिया जाए कि मान लीजिए कोई 12 बजे वो लेता है तंबाकू, फिर 2 बजे ले रहा है, तो हम बोलेंगे कि 12 बजे एक बार उसका ब्लड प्रेशर उसका चेक कर लीजिए, और कम से कम 2 टाइम उसका तंबाकू अगर नहीं लेता है तो देखते हैं कि उसमें बहुत सारे डिफरेंस आ जाता है तुरंत। तुरंत उसका डिफरेंस आ जाता है कि ब्लड प्रेशर उसका जो है मान उसको बढ़ना चाहिए उस परिमाण में वो नहीं बढ़ा है, और उसको उस हिसाब से ब्लड प्रेशर के हिसाब से उसको अच्छा लगने लगता है। ये तो छोड़ नहीं पाता है ये कोई
0: नहीं,
1: इतना इतना बीमारी होने के बाद हम लोग उसको सलाह देते हैं। हमारे यहाँ एक सेंटर भी है तंबाकू कंट्रोल का, एक ये भी है हमारे सदर अस्पताल में, तो वहाँ भी एक काउंसिलर बैठी हुई है, और वहाँ वो काउंसिलिंग करती है और सभी ये के बारे में, डिजीज के बारे में वो बताती है कैसे रहना है, क्या करना है। जिसको दवाई देना है उसको एंटी टोबाकू के लिए उसको दवाई दिया जाता है, नहीं तो उसको बीच बीच में उसको बुलाया जाता है उसको काउंसिलिंग के लिए। उसके बावजूद भी वो छोड़ नहीं पाता है वो।
0: अच्छा।
1: ऐसा नहीं है कि छोड़ नहीं पाता है, कुछ कुछ लोग छोड़ता भी है, लेकिन मैक्सिमम लोग वो छोड़ नहीं पाता है। तो हमारे उद्देश्य ये है इसमें जो इसका लत लग गया है उसको हम लोग छोड़ाने में थोड़ा तकलीफ है हम लोग को। ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ा सकते हैं, लेकिन उसको देर लगता है। लेकिन जो अभी तक उसका संस्पर्श में नहीं आया है, जो बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग का क्या है कि छोटा जब उसका 8-10 साल का हो जाता है तो बहुत कोई मना भी करते हैं, सिगरेट मत पियो, तंबाकू मत लो, ये सब। तो बच्चा लोग क्या है कि उसमें एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है कि आखिर इसमें है क्या। बड़े लोग पी रहे हैं और हम लोग बच्चे हैं, तो हम लोग बच्चों को मना कर रहे हैं, पीके देखते हैं। तो वही चीज अगर पीते पीते पीते पहले तो उसको उस शौक से पी रहा है, उसके बाद उसको थोड़ा बहुत हैबिट बन गया है, उसके बाद वो एडिक्ट हो जाते हैं। हैबिट और एडिक्ट में ये है कि हैबिट वो कभी कभी पी रहे हैं, मन लगा ये नहीं लगा नहीं पिया, लेकिन एडिक्शन जब हो जाता है उसको वो छोड़ नहीं पाता है।
0: अच्छा,
1: ठीक है। तो मैंने एक घरेलू इसका ट्रीटमेंट के लिए बहुत को मैंने बताया इसमें, तो सबसे पहले इसमें करना क्या पड़ता है, घरेलू जो ट्रीटमेंट है इसका कि उसको कैसे छुड़वा सकते हैं। सबसे पहले कि उस आदमी को जिसको छोड़ना है, टोटली उसको माइंड मेकअप करना है, हमको छोड़ना है तो छोड़ना है, वो डिसाइड कर लेंगे हमको

0: छोड़ना है, दृढ़ संकल्प लेंगे।
1: अच्छा।
0: तो कब छोड़ेंगे? जब देखते हैं अगर कोई कामकाजी आदमी है, संडे का दिन छुट्टी रहता है, सैटरडे का दिन हाफ डे किया है या छुट्टी भी रहता है, तो वैसा ही जब उसको छुट्टी मिलता है या रिलैक्स के लिए घर में उसको रह सकते हैं, वैसा ही दिन उस संकल्प ले कि हम इसको छोड़ दें।
1: बिल्कुल।
0: अभी अभी क्या है कि कोई भी जो नशा चीज है ना, देखा गया है कि वो 3 दिन तक उसका जो डिमांड है, तीन दिन तक वो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट में वो पहुंच जाता है उसका। उसके बाद वो अगर नहीं लेते हैं तो उसके बाद वो धीरे धीरे धीरे धीरे उसका डिमांड जो है उसको घटता है, उसमें
1: घटता है।
0: ठीक है, 7 दिन में वो घट जाता है। अगर 2 सप्ताह उसको नहीं लेंगे तो उसके बाद उसको वो छूट सकता है उसमें। तो सबसे पहले संकल्प कर ले हम कि हम नहीं लेंगे।
1: अच्छा।
0: और जब भी उसको सिगरेट पीने का, तंबाकू लेने का जब भी उसको मन बनेगा उसको, तो मुंह में अदरक, इलायची या लौंग ये सब ले सकते हैं, तो उसका डिमांड उसमें घटेगा, उसमें सिगरेट या तंबाकू का। लेकिन रात के नींद के लिए तो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा उसको।
1: बिल्कुल, बर्दाश्त करना ही पड़ेगा,
0: बर्दाश्त करना ही पड़ेगा उसमें। या तो हम लोग के पास अगर आते हैं, जैसे साइकियाट्रिस्ट भी है यहाँ, एक मेडिसिन है ब्यूप्रोपाइन बोल के मेडिसिन है, साइकोटिक मेडिसिन है, वो रात को नींद भी आएगा और उसका लेने का जो डिमांड है उसको भी घटाता है।
1: अच्छा।
0: तो ये तो बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना उसको मिलेगा नहीं। अगर डॉक्टर के पास आएंगे तो विभिन्न तरीका वो बता देंगे। या तो टेबलेट फॉर्म में ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग के पास जो काउंसिलर है वहाँ उसको काउंसिलिंग करेंगे और डॉक्टर के पास भेज देंगे। डॉक्टर उसको डोज के हिसाब से, एक निकोटीन सब्सटेंस होता है उसमें, तो वही है कि जो निकोटीन है, ये निकोटीन के रूप में ही एक लॉजेंस आता है, लॉजेंस को लेंगे तो उसको खाने का मन नहीं करेगा। फिर एक आपका जो ये है पैच, उसको बांधने के लिए निकोटीन पैच भी बांधा जाता है इसमें, है या तो टेबलेट फॉर्म में लॉजेंस लिया जाता है। तो ये तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट है। खुद से तो लत लग जाएगा और ये जो सारी बीमारियां है इसमें आ जाएगा, इसमें हार्ट का, किडनी का, लंग्स का, कैंसर का, ब्लड प्रेशर का, इवन डायबिटिक पेशेंट का भी। अगर तंबाकू लेने वाला का कंपैरेटिवली डायबिटिक पेशेंट जो तंबाकू ले रहे हैं उसको ज्यादा हानिकारक है और उसका जो शुगर का लेवल है वो बढ़ता है उसमें।
1: मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो तंबाकू जो है वो सारी बीमारियों का घर है।
0: एकदम एकदम,
1: है ना। अगर जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन कर रहा है वो ये जान ले कि उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत बीमारियां जो है वो आने वाली है। और अगर वो सुंदर तरीके से अपने जीवन को जीना चाहता है तो आज और अभी से अगर वो तंबाकू को छोड़ देता है तभी जाकर के वो अच्छा जीवन जी पाएगा।
0: बिल्कुल।
1: तो किसान भाई बहनों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर मृत्युंजय धावड़िया जी, जो कि नोडल ऑफिसर थे नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के, और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रख रहे थे बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही संक्षेप में, कि किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं, इसके लत को कैसे छुड़वा सकते हैं और ये कितना हानिकारक है। अभी आपने जाना इस सब विषयों के बारे में। डॉक्टर मृत्युंजय जी, आपने इतने अच्छे तरीके से जानकारियों को साझा किया और कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: किसान भाई बहनों, अभी आप विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों और बचाव के उपाय विषय पर डॉक्टर मृत्युंजय धावड़िया जी से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण सुन रहे थे। बाहें ध्वनि अंकन पर आधारित थी यह भेंटवार्ता। आइए एक नजर डाल लेते हैं मौसम और बाजार भाव पर। सुबह और संध्या के वक्त आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान रह सकता है 41 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। सापेक्षिक आर्द्रता रहेगी अधिकतम 71% और न्यूनतम 38%। हवा की दिशा होगी उत्तर से पश्चिम की ओर और रफ्तार रहेगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब एक नजर बाजार भाव पर। कृषि उत्पादन बाजार समिति परसुडी जिला पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त बाजार भाव कुछ इस तरह से है। आलू में बड़ी और मोटा आलू का भाव रहा 750 से 850 रुपए प्रति क्विंटल। साधारण आलू का भाव रहा 600 से 700 रुपए प्रति क्विंटल। सरसों तेल का भाव रहा 2690 से 2710 रुपए प्रति टीना। रिफाइन तेल का भाव रहा 2175 से 2280 रुपए प्रति 5 लीटर। प्याज का भाव रहा 1700 से 1900 रुपए प्रति क्विंटल। टमाटर का भाव रहा 2000 से 2100 रुपए प्रति क्विंटल। गुड़ का भाव रहा 4000 से 4600 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि चीनी का भाव रहा 4300 से 4500 रुपए प्रति क्विंटल। खीरा का भाव रहा 3000 से 3300 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि नींबू प्रति 100 पीस का भाव रहा 800 रुपए। चावल में उसना उत्तम किस्म का भाव रहा 4550 से 5550 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि मध्यम 3410 से 3760 रुपए प्रति क्विंटल और अन्य 2560 से 3370 रुपए प्रति क्विंटल। अरवा उत्तम किस्म का भाव रहा 5670 से 6250 रुपए, वहीं मध्यम का भाव रहा 3410 से 4020 रुपए और अन्य 3210 से 3420 रुपए प्रति क्विंटल। बाजार भाव की सूचना के बाद आइए सुनते हैं वीणा पानी महतो और साथियों के स्वर में कुरमाली लोकगीत।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ये देख कैसे।
5: हैप्पी बर्थडे भाई।
4: दीका,
6: हाँ मेरा फेवरेट कलर
5: हमेशा शॉपिंग।
7: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
8: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
9: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
7: आई नो ना।
9: RBI कहता है,
10: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले की निंदा। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हमले को बताया गलत। राज्य में दो सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। महागठबंधन का दावा, दोनों सीटें जीतने के लिए है पर्याप्त संख्या बल। एनडीए ने कहा, पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल करेंगे राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ। झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस अभियान में शामिल होने का किया अनुरोध। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में 6 जून तक गर्जन वज्रपात और तेज हवाएं चलने की जताई आशंका, येलो अलर्ट जारी। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में अब से कुछ देर में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आम लोग सरकारी दिशा निर्देशों का जरूर पालन करें।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों को गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांबरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करने का सुझाव दिया है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर कल हुए हमले की निंदा की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री सोरेन ने कहा है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिंसा और हमले के लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस हमले को गलत बताया है।
2: हमला कहीं भी लोकतंत्र में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। मैं मानता हूं कि 15 वर्षों तक वहां की जनता को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं

0: ने काफी परेशान किया, प्रताड़ित किया, गुस्सा निश्चित रूप से होंगे जनता के। लेकिन राज्य सरकार को देखना चाहिए, कानून को हाथ में जनता को नहीं लेनी चाहिए और सरकार निश्चित रूप से देख रही होगी।
1: राज्य में दो सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दावा किया है कि महागठबंधन के पास राज्यसभा की दोनों सीटें जीतने के लिए पर्याप्त संख्या बल है।
2: उनके पास कितनी संख्या है? 24 है तो कैसे 28 देंगे? ये पार्टी के प्रति जो आइडियोलॉजी में जिनको विश्वास है वह पार्टी चुनाव में विधायकों के लिए करती है, तो ये विधायक कोई भी राज्यसभा चुनाव ये सेंटर का है, आलाकमान का है, आलाकमान ये तय करते, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ इंडिया गठबंधन की जीत होगी।
1: इधर भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर बावरी ने कहा है कि पार्टी पूरे दमखम के साथ राज्यसभा चुनाव लड़ेगी।
3: आंकड़ा है तो फिर और को चिंता करने की बात क्या है? अब हमारा संवैधानिक अधिकार है चुनाव लड़ने का, हमारी वैचारिक मतभेद है तो हम चुनाव ही ना लड़ेंगे? हम अपने विचारों के साथ, अपने मुद्दों के साथ, अपने लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में रहेंगे। हमारे लिए 81 मतदाता है और उसमें हमको जीत के 28 सीट चाहिए। हम पूरे आश्वस्त हैं कि हमें 28 जीत के आंकड़े मिलेंगे।
1: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। इससे पहले श्री चौहान ने झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस अभियान में उनकी भागीदारी के लिए बात की है। खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा और खूंटी के विधायक राम सूर्य मुंडा ने आज मुरहू स्थित एक आवासीय विद्यालय परिसर में 50 शैया वाले छात्रावास निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सांसद ने बताया कि कल्याण विभाग की ओर से लगभग 2,25,00,000 रुपए की राशि से इस छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज परीक्षा केंद्र पर आज बीएड, एमएड और बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान कई अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि दस्तावेज जांच में देरी के कारण वे समय पर परीक्षा कक्ष तक नहीं पहुंच सके और उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया गया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्ष देश के विकास और आत्मनिर्भरता के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत में आज सांसद ने कहा कि विभिन्न केंद्रीय योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचा है।
4: अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा हुआ उसकी सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये 12 साल बिताए हैं और 12 साल में जो रिफॉर्म्स है, 13 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण, 54 करोड़ लोगों को जो है आयुष्मान भारत में 5 लाख का इलाज हो रहा है, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, 5 करोड़ से ज्यादा घर बन गए हैं और 8 करोड़ से ज्यादा गैस का सिलेंडर मिला है, तो सभी फ्रंट्स पे ये देश प्रगति कर रहा है।
1: विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कुमला सदर अस्पताल परिसर में आज जिले के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने तंबाकू नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जन जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करने वाले रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पलामू जिले से पुलिस ने एक आपराधिक गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि ये अपराधी एक निजी कंपनी के कैंप पर गोलीबारी करने की योजना बना रहे थे।
5: एसडीपीओ हुसैनाबाद के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और पुलिस के द्वारा उनको पकड़ा गया, तो उनके पास से एक बैग में 2 9mm की पिस्टल रिकवर हुई थी और इसके अलावा कुछ गोली उनके पास से बरामद हुई थी। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि उनके द्वारा राहुल सिंह के गैंग के लिए रंगदारी वसूलने का काम किया जा रहा था, उनके द्वारा यहाँ पे किसी घटना को अंजाम देने के लिए ये सब लोग मिलकर आए हुए थे। इसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
1: बोकारो जिले में 25 वर्षीय एक महिला की कथित हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई ने दावा किया है कि महिला 4 महीने की गर्भवती थी और उसकी हत्या की गई है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में 6 जून तक गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने इस दौरान आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। विभाग के अनुसार कल राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों को छोड़कर अधिकतर क्षेत्रों में गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। वहीं 2, 3 और 4 जून को उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी जिलों को छोड़कर राज्य के शेष भागों में गरज के साथ बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। जामताड़ा के गांधी मैदान में चल रहे 20वीं राज्य स्तरीय 3 दिवसीय बालिका खो खो प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में आज रांची की टीम ने प्रतियोगिता जीत ली। इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों की 18 टीमों ने भाग लिया था। आईपीएल, गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। यह मैच अब से कुछ देर बाद शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले की निंदा, दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हमले को बताया गलत। राज्य में 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। महागठबंधन का दावा, दोनों सीटें जीतने के लिए है पर्याप्त संख्या बल। एनडीए ने कहा पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल करेंगे राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ। झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस अभियान में शामिल होने का किया अनुरोध। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में 6 जून तक गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की जताई आशंका, येलो अलर्ट जारी। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में अब से कुछ देर में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: तीनों कॉलेज में
7: डोंट वरी,
6: फीस तो देखो।
8: क्या हाल है, क्या हुआ?
7: फीस की टेंशन,
8: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
9: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
8: वो कहाँ है?
9: मिठाई।
10: आरबीआई कहता है
11: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: इस अंक में आप सुनेंगे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चतरा संवाददाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आकांक्षी जिला चतरा में केंद्र सरकार के सहयोग से किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा करते हुए चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि
2: कांटागंज में बाईपास सैंक्शन हो गया, चतरा बाईपास निर्माण हो रहा है, चतरा का रेल लाइन का गजट हो गया, ये भारत सरकार की योजना नहीं है तो क्या है। दूसरी बात, ये बहुत जगह ऐसे प्रखंड थे जहां आपको पोस्ट ऑफिस नहीं था, कुंदा में पोस्ट ऑफिस नहीं था, लावलंग में पोस्ट ऑफिस नहीं था, राजपुर में पोस्ट ऑफिस नहीं था, कि दौर में इन सारे पोस्ट ऑफिस जो सरकार से रजिस्टर्ड था 25 वर्षों से थे सारे सैंक्शन हो गए। रेल लाइन कभी हम लोग गया चढ़ने के लिए जाते थे राजधानी, आज लातेहार में हम चढ़ रहे हैं। 32 ट्रेनें राजधानी केवल चतरा लोकसभा, केवल हंटरगंज या चतरा ही नहीं है, 5 लोकसभा है, सभी लोकसभा के लिए काम हो रहा है। चतरा से डाल्टनगंज की दूरी 60 किलोमीटर घट गया, एक रोड का शिलान्यास होने जा रहा है, प्रशासनिक हो चुका है उसका, यूना टेंडर होने जा रहा है, मैं खुद लगाऊ चंदवा फ्लाई ओवर के लिए।
1: चतरा जिले के 35वें स्थापना दिवस के मौके पर 851 झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। मौके पर जिले के उपायुक्त रवि आनंद ने कहा कि जिला प्रशासन जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रहा है।
3: सबसे पहले तो मैं चतरा जिले के 35वें स्थापना दिवस पर चतरा जिले वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और झारखंड अलग राज्य गठन हेतु किए गए आंदोलन में जो आंदोलनकारी थे या उनके आश्रित हैं उनको आज प्रमाण पत्र शॉल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया था। पूरे जिले अंतर्गत जो 122 आंदोलनकारी थे सभी प्रखंडों से हम लोगों ने उनको बुलाया है आज यहाँ पे जिला स्तर पे और 122 आंदोलनकारी को जो है सम्मानित किया गया जिला स्तर मुख्यालय स्तर। इसके साथ ही साथ जो संबंधित प्रखंड है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने संबंधित प्रखंडों में जो प्रखंड के आंदोलनकारी हैं उनको वहीं पर सम्मानित किया जा रहा है। जिले के अंदर जितने भी हमारे 121 आंदोलनकारी चिन्हित किए गए थे उनको आज प्रमाण पत्र मोमेंटो रोमशाल के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है।
1: भाजपा के 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर चतरा पहुंची केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्रालय के द्वारा महिलाओं और बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा करते हुए बताया कि
4: मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य जो साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि 6 साल तक के बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट लगभग 85% हो जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आंगनवाड़ी केंद्र की जो हमारी दीदियां हैं उनको प्रशिक्षित कर उनको पोषण ट्रैकर के माध्यम से छोटे छोटे रील्स बनाकर कि वो गर्भवती महिलाओं को भी बताएं, धात्री माताओं को भी बताएं और जो बच्चे 3 से 6 साल के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं उनको पोषण के साथ साथ उन्हें उनका बौद्धिक विकास कैसे हो उस दिशा में भी वो काम करें, तो छोटे वीडियो के माध्यम से उनको समय समय पर प्रशिक्षण देकर कि उनका बेहतर देखरेख कर सके इस दिशा में भारत सरकार कर रही है।
1: 30 मई को व्यवहार न्यायालय चतरा में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें 238 मामलों का निपटारा किया गया, वहीं 31 लाख से अधिक के सरकारी राजस्व की प्राप्ति भी हुई। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा।
0: अभी आप सुन रहे थे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी रांची से जिले में आजकल अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:15 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है बांग्ला कार्यक्रम।

बांग्ला कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 7:45 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा पर्यावरण।

दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं तो ताजी हवा चाहते हैं, पीने के लिए स्वच्छ पानी चाहते हैं, हरियाली और शांति चाहते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जिस प्रकृति से हमें इतना कुछ मिलता है, उसकी सुरक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं? आज पूरी दुनिया

0: पर्यावरण संकट का सामना कर रही है। कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, तो कहीं सूखे की स्थिति बन रही है। मौसम का बदलता स्वरूप साफ संकेत दे रहा है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। संस्थाएं लगातार चेतावनी दे रही हैं कि यदि समय रहते पर्यावरण की रक्षा नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। हवा, पानी, मिट्टी, जंगल, पशु पक्षी और मानव, ये सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। लेकिन बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और आधुनिक जीवन शैली ने प्रकृति पर दबाव बढ़ा दिया है। प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग नदियों और जमीन दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। जंगलों की कटाई के कारण वन्य जीवों का जीवन संकट में पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या केवल सरकारें ही पर्यावरण बचा सकती हैं? तो जवाब है नहीं। पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी हम सभी की है। हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके बड़ा योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका होना चाहिए। यदि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तभी प्रकृति भी हमारा साथ देगी। एक पुरानी कहावत है, पेड़ पृथ्वी का आभूषण है। वास्तव में एक पेड़ केवल ऑक्सीजन ही नहीं देता बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य भी देता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वयं जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर वर्ष इसके लिए एक विशेष थीम भी होता है। इस वर्ष यानी 2026 का थीम है, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। ये थीम जलवायु परिवर्तन की तात्कालिकता, पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और एक सुरक्षित भविष्य के लिए सामूहिक जलवायु कार्यक्रम पर केंद्रित है। इसका मुख्य फोकस है बढ़ते वैश्विक तापमान और मौसम के चरम बदलावों को रोकने के लिए पर्यावरण अनुकूल और जलवायु परिवर्तन से लड़ने वाली प्रणालियों पर जोर देना। दोस्तों, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि पर्यावरण संरक्षण किसी एक की नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है, तो इसी विषय पर विस्तार से जानकारी लेते हैं नीतू श्री की इस वार्ता में। वाचन स्वर मंजू कुमारी का है।
1: विश्व पर्यावरण दिवस साल 1973 से हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख मंच है जो विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता और कार्यवाही को प्रोत्साहित करता है। ये जलवायु लक्ष्यों, महासागर संरक्षण और पारिस्थितिकी बहाली और जिम्मेदार उपभोग की दिशा में सतत कार्यवाही को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यावरण संबंधी जागरूकता फैलाने का सबसे बड़ा मंच है। धरती बहस नहीं करती, समझौता नहीं करती, वो संकेत भेजती है। बढ़ता समुद्र स्तर, भयंकर जंगल की आग, लू, पिघलते ग्लेशियर, हमने कहा था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा है, हम इसे पार कर रहे हैं। दशकों से दुनिया जलवायु परिवर्तन की कहानी सुनती आ रही है, चेतावनी, लक्ष्य, दूर की समय सीमाएं, लेकिन अक्सर प्रतिक्रिया शोरगुल से घिरी रही है, देरी, ध्यान भटकाना, इनकार करना। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है। पृथ्वी द्वारा भेजे जा रहे गंभीर संकेतों और हमारे द्वारा बदले में भेजे जाने वाले संकेतों पर यूएनईपी का वैश्विक अभियान हम सभी से आगे बढ़कर इस परिवर्तन की दिशा में और अधिक प्रयास करने का आह्वान करता है। प्रश्न अब ये नहीं है कि परिवर्तन आएगा या नहीं, बल्कि ये है कि हम इसे कैसे निर्देशित करते हैं और ये कितनी तेजी से होता है। अगर हम आज के समय यानी 2026 की बात करें तो हमारे सामने कुछ बहुत ही साफ और कड़े लक्ष्य हैं। सबसे बड़ी चुनौती है ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के भीतर रखना ताकि हमारा तापमान खतरनाक स्तर तक ना पहुंचे। इसके साथ ही आज हमें ऐसे शहरों की जरूरत है जो लचीले हो, यानी स्पंज शहर जो अचानक आने वाली बाढ़ या आपदाओं को झेल सके। सीधे शब्दों में कहे तो आज दुनिया समस्या को पहचानने से आगे बढ़कर उसके समाधान की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रही है। अब बताते हैं आपको विश्व पर्यावरण दिवस का इतिहास। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव अपनाया। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1973 में केवल एक पृथ्वी इस थीम के साथ मनाया गया था। तब से विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को एक नए विषय और एक नए मेजबान देश के साथ मनाया जाता है। इससे वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय चिंताएं उत्पन्न हुई, क्योंकि जलवायु परिवर्तन त्वरण के कारण पर्यावरणीय चिंताएं एक वैश्विक परियोजना में तब्दील हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर के लाखों लोग इस आयोजन में भाग ले रहे हैं, जिससे ये संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े वार्षिक आयोजनों में से एक बन गया है। वक्त बदला है और हमारी चुनौतियां भी, इसलिए आज के दौर में कुछ नए फोकस क्षेत्र उभर कर सामने आए हैं। आइए इस पर बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन और आपदाओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन स्केलिंग 2026, स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों को अपनाया जा रहा है। लचीले शहरों का निर्माण, शहरों को जलवायु संबंधी झटकों से निपटने में सक्षम बनाना है। इलेक्ट्रिक वाहन ईवी अवसंरचना 2026, स्वच्छ परिवहन के जरिए से प्रदूषण को कम करना है। इसी दिशा में साल 2026 में बाकू का उद्देश्य बहुत बड़ा खाका पेश कर रहा है। बाकू घोषणा पत्र जलवायु संबंधी मजबूत प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके तहत हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पर्यावरण को कैसे सुधार सकती है। जलवायु परिवर्तन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा ग्रिड को कैसे अनुकूलित किया जाए। ग्रीन हाइड्रोजन के विस्तार से तेल उत्पादक देशों को एक हरित अर्थव्यवस्था में बदलने में कैसे मदद की जाए। ये वैश्विक स्तर पर उभरते जलवायु संकट और उसके समाधान पर चर्चा करने की अत्यधिक आवश्यकता को दिखाता है, विशेष रूप से बढ़ते तापमान और पर्यावरणीय गिरावट की पृष्ठभूमि में। सरल शब्दों में कहे तो ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम हर दिन जो कुछ भी करते हैं उसका प्रकृति पर सीधा प्रभाव पड़ता है, और यहाँ तक कि छोटे मोटे बदलाव भी पर्यावरण में महत्वपूर्ण सुधार ला सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस दिन का उत्सव हमें पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन में व्यक्तियों, उद्यमों और समुदायों द्वारा प्रबुद्ध राय और जिम्मेदार आचरण के आधार को व्यापक बनाने का अवसर प्रदान करता है। 150 से अधिक देशों में मनाया जाने वाला ये दिन जन जागरूकता के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में काम करता है, जो पर्यावरण संबंधी गंभीर मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करता है और सरकारों, व्यवसायों, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के महत्व की। तो ये दिन सिर्फ पेड़ लगाने की औपचारिकता नहीं है, इसका महत्व बहुत गहरा रहा है। ये दिन जागरूकता बढ़ाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वनों की कटाई, जैव विविधता की हानि और जल संकट जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाता है। ये पर्यावरण की देखभाल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण में मदद करने वाली गतिविधियों और परियोजनाओं में भागीदारी के लिए एक मंच प्रदान करता है। कार्यवाही और वकालत को प्रोत्साहन, ये व्यक्तियों, सरकारों और व्यवसायों को सकारात्मक पर्यावरणीय कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नीतिगत विचार विमर्श की शुरुआत, ये दिन अक्सर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने और सतत विकास हासिल करने के तरीकों पर नीतिगत चर्चाओं और प्रतिबद्धताओं की शुरुआत करता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये पर्यावरणीय चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए राष्ट्रों, संगठनों और व्यक्तियों के बीच वैश्विक सहयोग और साझेदारी को प्रोत्साहित करता है, नवाचार को बढ़ावा देता है। ये पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन में नवाचार और पहल को प्रोत्साहित करता है, सर्वोत्तम प्रथाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है, समुदाय को सशक्त बनाना। WED स्थानीय समुदायों को अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित और सशक्त बनाता है, जिससे सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। विश्व पर्यावरण दिवस का आधिकारिक कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा उस वर्ष के मेजबान देश के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इसमें आमतौर पर उच्च स्तरीय सम्मेलन, मंच और पैनल चर्चाएं शामिल होती है, जिनमें सरकारी नेता, पर्यावरण विशेषज्ञ, कार्यकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि चयनित विषय पर चर्चा करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक साथ आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, तो इसका जवाब हमारे पारंपरिक और आधुनिक तौर तरीकों में ही छिपा है। आधिकारिक आयोजनों के अलावा विश्व

0: भर में कई तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें आम तौर पर जो शामिल होते हैं उसकी बात करते हैं हम अब। पर्यावरण अनुकूल खरीदारी का उपभोक्ता व्यवहार, एक उभरता हुआ चलन जहां लोग पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों और पैकेजिंग की तलाश कर रहे हैं। श्री अन्ना बाजरा, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के स्रोत के रूप में जल कुशल और टिकाऊ भोजन तक पहुंच के लिए बाजरा को मुख्य धारा के दैनिक जीवन दैनिक आहार में बढ़ावा देना है। लचीला शहरीकरण, शहरीकरण और लचीले शहरों के क्षेत्र में कई गतिविधियां होती है, जैसे कि अचानक आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए स्पंज शहरों का निर्माण समेत अन्य काम। शैक्षिक कार्यक्रम, स्कूल कॉलेज और स्वयंसेवी समूह पर्यावरण और सतत जीवन शैली के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं और वार्ताएं आयोजित करते हैं। सफाई अभियान, समुदाय अपने आस पड़ोस पार्कों, समुद्र तटों और अन्य पारिस्थितिक तंत्रों में कूड़ा करकट और दूसरे तरह के प्रदूषण को रोकने के लिए सफाई अभियान चलाते हैं। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण एक और आम परियोजना है जिसमें लोग वनों की कटाई को रोकने और वनस्पति को बढ़ावा देने के लिए पेड़ लगाते हैं। पर्यावरण अभियान, गैर सरकारी संगठन और पर्यावरण संगठन जल संभर के अनुकूल नीतियों और प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाते हैं। ऑनलाइन और सोशल मीडिया अभियान, जागरूकता बढ़ाने, ज्ञान साझा करने और कुछ हैशटैग और ऑनलाइन कार्यक्रमों के जरिए से वैश्विक कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए वेब और सोशल मीडिया का उपयोग किया जा सकता है। पुरस्कार और सम्मान, पर्यावरण स्थिरता की दिशा में काम करने वाले व्यक्तियों, संगठनों और समुदायों को दिए जाने वाले पुरस्कार और मान्यताएं भी शामिल है। पर्यावरण संरक्षण कोई विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, AI आधारित जलवायु और लचीले शहरों के निर्माण जैसी सतत पहलों को बढ़ावा देकर दुनिया स्थिरता की ओर बढ़ रही है, लेकिन व्यापक जलवायु संकट से निपटने और उसके समाधान के लिए सहयोग जरूरी है। पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटना गैर सरकारी संगठनों, NGO और नागरिक समाज समूहों की मदद के बिना संभव नहीं होगा। सरकारी नियमों और उनके क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटने का काम गैर सरकारी संगठन करते हैं।
1: सुरक्षित पर्यावरण हम सब की जिम्मेदारी, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे नीतू श्री की वार्ता, वाचन स्वर मंजू कुमारी का था। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना संतोषी झा के साथ, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा पर्यावरण अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8 बज चुके हैं और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, लेकिन उसके पहले लेते हैं विराम और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर,
3: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के

विद भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

फिल्म संगीत के सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त विभा का प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, आज की महफिल हमने सजाई है बेहद ही चुनिंदा फिल्मी गीत से। आइए सुनते हैं पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अभिमान से। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और इसकी धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

जावेद अख्तर के लिखे गीत को स्वर दिया था कविता कृष्णमूर्ति ने और इस गीत को संगीत से सजाया था आर डी बर्मन ने। फिल्म का नाम था 1942

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की मिली जुली आवाज़ों को अभी आप सुन रहे थे जंजीर फिल्म के इस गाने में। शब्द रचना गुलशन बावरा की थी और संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का। श्रोताओं, आप बने रहिएगा कार्यक्रम में हमारे साथ। हम आते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर।
5: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी

तराल के बाद हम हाजिर हैं श्रोताओं कार्यक्रम फिल्म संगीत के शेष भाग के साथ। और अगला गीत हमने लिया है कुमार सानू की आवाज में फिल्म इम्तिहान से। शब्द रचना फैज अनवर की है और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास के मिली जुली आवाजों को हीरो फिल्म में अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म के गाने में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों को। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और जतिन ललित का संगीत। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत की आज की प्रस्तुति से मुझे यानी विभा को दीजिए अनुमति। हम फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। नमस्कार। फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 8:45 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी

0: की सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और

0: कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open Badminton Tournament. And in IPL cricket, high voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
5: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
4: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Ayya, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the lair of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
5: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
4: Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi.
5: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
4: During the program, Mr. Modi also interacted with sprinters Gurinder Veer Singh and Animesh Kujur, who broke national records in the 100-meter race. Mr. Modi also reflected on the government's continuous efforts to preserve the country's priceless cultural heritage. He also referred to his recent visit to the Netherlands, where during a special ceremony, ancient copper plates from the Chol period were returned to India. The Prime Minister praised conservation efforts under the Namami Gange initiative, citing the successful rescue of a gangetic dolphin trapped in a canal in Uttar Pradesh with the help of India's first Ganga Dolphin Rescue Ambulance. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged consumption of traditional summer beverages. Referring to mangoes, a favorite summer fruit, Prime Minister Narendra Modi praised the efforts of farmers, saying Indian mangoes are now reaching global markets from villages across the country. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar president arrived at Gaya in Bihar yesterday on a 5-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power Manohar Lal today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, the Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. On the occasion, the Union Minister distributed loan checks and QR-coded credit cards to street vendors to promote digital transactions and economic self-reliance. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has said an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of Class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal of its service provider that were recently flagged in the public domain. It said vulnerabilities have been identified and contained, and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. Chief of Defence Staff CDS General N.S. Rajasubramani today said the armed forces have consistently demonstrated professionalism and operational decisiveness in safeguarding the nation's interest. He said they remain committed to protecting India's sovereignty and territorial integrity. General Subramani was addressing the media after assuming charge as the country's new CDS.
6: We pay homage to our brave hearts whose valor, sacrifice and dedication to the nation continue to inspire us. We are committed to the welfare of our veterans and Veer Naris. I assure the citizens of India that the armed forces will continue to serve the nation with dedication, courage, honor, and professionalism.
4: Admiral Krishna Swaminathan today assumed charge as the 27th Chief of the Naval Staff. He succeeds Admiral Dinesh K. Tripathi. Addressing the media on the occasion, Admiral Swaminathan said the Indian Navy remains vigilant in safeguarding the nation's interests and is actively deployed in a regional security environment that continues to be challenging, complex, unpredictable and uncertain. West Bengal Governor R. N. Ravi today expressed concern over security vulnerabilities along the India-Bangladesh border, saying that unfenced stretches of the border pose a threat to national security. The governor was speaking to the media at Baghdogra before attending an event in Siliguri. He also stressed the need to strengthen security along the strategically important Chicken Neck Corridor that connects the northeast with the rest of the country. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. In Himachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party has won 3 out of the 4 municipal corporations in the civic body elections. The counting of votes was held today while polling took place on the 17th of this month. More from our correspondent.
7: The Bharatiya Janata Party has secured a major victory in Himachal Pradesh municipal corporation elections, winning Dharamshala, Solan and Mandi. The Congress Party has won the Palampur municipal corporation. In Dharamshala, the BJP won 11 of 17 wards, while Congress secured 5. In Solan, BJP won 10 wards and Congress 6. In Mandi, BJP dominated with 12 of 14 wards, while Congress won 1. In Palampur, Congress secured a clear majority with 11 of 15 wards, while BJP won 4. Counting of votes for Jila Parishad and Panchayat Samiti elections has also been completed. Though held without party symbols, both BJP and Congress have claimed victorious of their supported candidates. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
4: Vice President C.P. Radhakrishnan today said that political leadership is one of the most demanding fields of public life and stressed that constructive criticism must remain fair and balanced. The Vice President made these remarks while inaugurating the 140th Foundation Day celebrations of the Deepika Malayalam Daily and presenting the Deepika Excellence Awards at Kottayam in Kerala. He emphasized that journalism should highlight stories of hope, innovation, compassion and scientific progress, noting that such constructive reporting strengthens public confidence and inspires the youth towards nation building. Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today said India has transformed from a technology follower to a technology leader over the past 12 years. Speaking in a podcast with Doordarshan News, Dr. Singh said the country is playing an increasingly important role in the development of frontier technologies and helping shape the future of global innovation. On artificial intelligence, the minister said India is adopting a balanced approach by combining human expertise with AI-driven systems to enhance efficiency and innovation. In Himachal Pradesh, 8 people lost their lives after their vehicle fell into a deep gorge in the Chamba district. The accident occurred on the Bairagarh-Sachpa-Skillad road in the remote Chura subdivision. The deceased include 7 tourists from Chhattisgarh and the driver of the vehicle. In Myanmar, more than 45

0: is Delhi. Please stand by for our next program. This is All India Radio. We now bring you the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio.
1: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत है आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज.

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या,
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
2: जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीज फातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई, लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
1: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रहीं।
0: महबूब खान द्वारा निर्मित

0: 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
1: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
2: खबरदार राधा, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। छोड़ दो।
1: देवी ने तुम्हें धन दिया और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई है। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन। धान पर बैठकर तमाशा देखना आसान पर खुद तमाशा बनकर जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। मैं तेरे को बताऊंगी कि एक मजबूर माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती, कहाँ तक गिर सकती, कहाँ तक गिर सकती। देवी शक्ति नहीं दे सकती, देवी तो लाज ले लो, लाज ले लो देवी। मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती देवी।
3: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
4: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह ये भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहाँ जिंदगी को जिंदगी की नज़र से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है। यानी उस वक्त से काम कर रही हूं जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुँचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
0: फिल्म तकदीर में नरगिस ने पहली बार मुख्य अभिनेत्री का चरित्र निभाया। इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
4: जैसा कि आप सब जानते हैं मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहाँ तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
3: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
4: फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं।
0: श्रोताओं, पुरानी फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थी।
4: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्यालात रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदल कर एक कोठे पर गई। वहाँ आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल बातचीत नाच गाना पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
3: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: दर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री

0: श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोताओं, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमा, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में, चतुरंग।

ಸೋ ಚತರಂಗ ಗಾವೋ ಗುಣ ಸಭಾ ಮೇಲ ಗರ ಚತರಂಗ ಗಾ

0: बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।
1: आज गावा तमा

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया लोकप्रिय भजन ठुमक चलत

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

श्रोताओं, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत, किसने बांसुरी बजाई।

0: सन 40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शास्त्री जी का एक और गीत।
1: बोल कहीं बोल, यहां तो न बोल श्यामा,

संस्कृति के उपकरण बदल गए पहले कारण करण। जीवन के बाने में आने वाला

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: अभी आप आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे।
2: You are listening to the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर

0: वासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु येरैया इज अ रिनाउंड सैक्सोफोन आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadappa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of Kanchi Kamakoti Asthana Vidwan.
0: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वी एन बालचंदर संगति देंगे। श्री वी एन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
1: इन टुनाइट्स कंसर्ट Sri Asanapurupu Yerraya and Party is accompanied on special dolu by Sri V.N. Balachandar. Sri V.N. Balachandar is a renowned dolu artist from Andhra Pradesh. He received training under distinguished gurus including Sri N. Lakshmi Narayana and Tiruchare T.Z. Muthu Kumaraswamy Pillai. He is a top grade artist of Akashwani.
0: Sri Yerraya apne saxophone vadan ki shuruaat kar rahe hain.

0: निन्नु कोरी युनन्नुरा से ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है.
1: श्री एर्रय्या बिगिन्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नु कोरी युनन्नुरा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल.

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ दोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वी एन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पठनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to निन्नु जेप्पा कारणमेनी, a composition of पठनम सुब्रमण्यम अय्यर in राग मंदारी, set to आदिताल।

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सुरजानंद की है। राग कीरवाणी में ये रचना मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: You are now listening to the saxophone recital by श्री अस्नापुर पियर्रैया in the रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एर्रैया next presents सामगान प्रियकरम, a composition of गुरु सुरजानंद in राग कीरवाणी set to मिश्र चापू ताल।

0: श्री यरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तुरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री यरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग बृंदा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। डोलू पर संगति दी श्री वीएन बालचंदर ने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: You have been listening to the saxophone recital by Sri Asanapurappu Yerraya and party in the Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. He was accompanied on special dolu by Sri V.N. Balachandar. This program was recorded in the studios of Akashwani Kadapa, and this broadcast came to you from the studios of Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वला शेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में शाजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Man Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए। धूप में अगर निकलना ही पड़े, तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न-भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है, वो भी भूलिएगा नहीं।
2: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar president arrived at Gaya in Bihar yesterday on a five-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has said an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OS.